नमस्कार, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज। आज गुरुवार है, शक संबत 1948, वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 मई सन 2026। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है खेती किसानी। आज का विषय है कृषि विज्ञान केंद्र। वाचन अनीता तिर्की का।
3: कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संपोषित एवं संचालित कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक परियोजना है, जिसे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर देश के प्रत्येक जिले में स्थापित करने की अनुशंसा 1973 में की गई। केंद्र मुख्य रूप से अपने चार अवधारणाओं, जो कि क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुरूप और भूमि उपयोग प्रणाली पर आधारित है, उन पर सहभागिता आधारित तकनीकी आकलन संशोधन, अग्रपंक्ति तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्य करता है। ये सभी अवधारणाओं के आधार पर सहभागिता आधारित प्रौद्योगिकी विकसित कर उत्पादन अंतर को प्रशिक्षण के माध्यमों से दूर करने के सशक्त प्रयास करता है, साथ ही साथ ग्रामीण युवक युवतियों को रोजगार उन्मुखी बनाकर उन्हें नई पहचान देने की सफलता पूर्वक प्रयास करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय कृषि में नित्य हो रहे नए नए अनुसंधानों को किसानों उपयोगी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि प्रसार को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प है और नियोजित ढंग से कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, जिससे केंद्र अपने संबंधित जिले में अग्रणी कृषि विस्तार का एक सफलतम संस्थान के रूप में कारगर हो सके। इस दिशा में केंद्रों की सफलता का सकारात्मक परिणाम आना शुरू है, जिससे कुछ अन्य देश भी परिषद की इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र को अपनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अहमियत को प्रमुखता दी गई है, जिसका परिणाम है कि आज देश में 612 केवी के कार्य कर रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्र अपने उद्देश्यों पर खरे उतर रहे हैं। किसानों के बीच उनके खेतों खलिहानों और घरों तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं, जिसे किसान भी अपना केंद्र मानने लगे हैं। केंद्र के पास सीमित संसाधन होता है, पर अपने समन्वय कौशल को मजबूत करते हुए एवं सहायता किसान क्लब, प्रगतिशील किसान, कृषक मित्रों, कृषि विभाग के अधिकारियों, आत्मा एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से और लास्ट मील और लास्ट पर्सन तक ये संभव हो पाती है। इन सभी स्टेक होल्डर्स में क्षमता विकास कर आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को किसानों तक ले जाने पर केंद्र कारगर होता है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जिसमें 22 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है। इन जिलों की भौगोलिक स्थिति और पारिस्थितिक भी अलग अलग हैं। सभी जिले के केंद्र जिले की पारिस्थितिकी, कृषि प्रणाली, फसल प्रणाली, संसाधनों एवं किसानों की आवश्यकता अनुसार विशेष क्षेत्र का चुनाव कर उन्हें खेत परीक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण के माध्यम से सशक्त कर रहा है, जिससे जिले में समग्र कृषि विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, अलग अलग प्रखंडों में दिखने लगा है।
2: कृषि विज्ञान केंद्र, ये विषय था आज के खेती किसानी का। वाचन अनीता तिर्की का। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल।

0: संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है वो आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं वो कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दे। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। सत्य को कितने भी पर्दों में क्यों ना छुपा कर रख दिया जाए, एक ना एक दिन वो प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनुष्यों ने यथार्थी कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य सदैव कड़वा होता है। तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं। सत्य के महत्व पर गांधी जी ने कहा है कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित हो। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत से।

अनूप जलोटा की आवाज में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम आराधना यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।
1: एपिसोड 115 115।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्रे, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक नजर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा जिसमें सुनिए भेंट वार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर अर्चना पाठक, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। 7:15 पर फिल्म संगीत का

कार्यक्रम सुबह सुरीली खुला आकाश आप सुनेंगे 7:45 पर। इसमें सुनिए वार्ता प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। वार्ताकार होंगे प्रकाश कुमार। समाचार प्रभात 8:00, 8:15 पर। मॉर्निंग न्यूज प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 8:45 पर। कलाकार होंगे सुकुमार और साथी। इनसे सुनिए खोरठा लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन 9:00। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। कलाकार होंगे सविता राय। इनसे सुनिएगा राग नंद में खयाल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध होंगे और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध होंगे। विज्ञान जगत कार्यक्रम होगा 10:00। चर्चा सुनिए ओवरटेक, तेज गति से वाहन चलाने से बचें। साथ ही भेंट वार्ता सुनेंगे हीट वेव और लू से बचाव एवं उपचार। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर पीके गुप्ता, भेंटकर्ता वसंत कुमार, वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की। जोहार रांची कार्यक्रम होगा 10:30 पर। फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद 11:30 पर। 12:00 कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी। चर्चा सुनिए चाय तेरे कितने रूप। साथ ही भेंट वार्ता सुनेंगे उच्च रक्तचाप लक्षण कारण और उपचार। भेंट वार्ताकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सार पे जानकारी आप लेंगे हरियाली बचाएं जीवन बचाएं, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 12:30। 1:00 हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार 1:05 पर। 1:10 पर प्रादेशिक समाचार। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा अनुरंजनी 1:20 पर। कलाकार होंगे सिद्धेश्वरी देवी। इनसे सुनेंगे खमाज में ठुमरी। सुगम संगीत 1:45 पर। कलाकार फागुनी पाठक। इनसे आप सुनेंगे पॉप सॉन्ग्स। मिड डे न्यूज 2:00, 2:15 पर दोपहर समाचार। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम 2:30 पर होगा जय भारती। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर। नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी 3:00, 3:30 पर रांची मेलोडीज। मुख्य समाचार आप सुनते हैं 4:00, 5:00 और 6:00। 4:02 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम पुनः प्रसारण होगा। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की। सांझ सरगम कार्यक्रम होगा 4:35 पर। 5:02 पर विवाणी कार्यक्रम होगा। इसमें सुनिए चर्चा वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। कंपियर होंगे प्रीति और वैभवी, प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम होगा 5:30 पर। इसमें चर्चा सुनिए हिंसा नहीं शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाएं, प्रगति और विकास को गति देने में सांस्कृतिक विविधता की भूमिका अग्रणी। और टैगोर की कविता से राष्ट्र की आवाज तक आकाशवाणी नामकरण की कहानी। श्रमिकों को योजनाओं से जुड़ने की प्रभावी माध्यम ई श्रम पोर्टल। कंपियर होंगे रजना तिवारी और आकांक्षा सिन्हा, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। किसान वाणी कार्यक्रम 6:02 पर, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम होगा, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। ये थे प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटलीदेशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्. ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्. कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः. कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्. इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोमनगरे संयुक्तवक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहनक्षेत्रेषु नौकापत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः. भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः. इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिञ्च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति. सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति. प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्. पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणाञ्च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्. पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्. गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः. गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति. पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति. आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः. भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति. विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति. आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्. अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। सुनते हैं भेंट वार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार डॉक्टर अर्चना पाठक, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हर जगह आजकल तनाव का वातावरण है, खासकर हमारी महिलाओं और माताओं में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो हमारी माताएं और बहनें तनाव से क्यों घिर जाती हैं, क्या उसका कारण है और हम उस चीज़ों से अपना बचाव कैसे करें और कौन कौन सी सामान्य बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो तनावग्रस्त हो जाती हैं, बातचीत करेंगे डॉक्टर अर्चना पाठक से, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्वागत है आपका। महिलाओं में आए दिनों तनाव का कारण क्या है, हम क्या हमारी बिगड़ती जीवन शैली है या महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों का वहन करती हैं, उन्हें घर का भी कार्य करना पड़ता है और बाहर की जिम्मेदारियों भी उन्हें निर्वहन करना पड़ता है।
5: जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य से हम ये समझते हैं कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में खासकर अगर हम देखें तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अभी जो कोविड का जो पीरियड था या कोविड का जो ड्यूरेशन रहा, उसमें लोगों ने काफ़ी अपने लोगों को खो दिया या फिर उनको फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत फेस करने पड़े। एक जो खुशी थी वो उनके पास नहीं रही, कारण बहुत सारे तनाव से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आगे और डेवलप हो रहे हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत मेन रीजन है कि महिलाएं अपने परिवार को अपने से आगे रखती हैं, तो जिसके कारण वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और खान पान में पूरा ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पे एनीमिया उनको होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो शरीर में उनके खून की कमी हो जाती है, तो वो एनीमिया के कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो उनमें शारीरिक काफी बदलाव आता है और वो बहुत कमजोर महसूस करती हैं। अभी थायराइड का भी काफी पहले से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार ने अपने तरफ से बहुत कुछ किया है इसके लिए, जैसे कि आयोडीन युक्त नमक वगैरह जो उन्होंने प्रोवाइड कराया है, बट लोगों में अभी भी इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है और महिलाओं में खासकर ये थायराइड के प्रॉब्लम भी पहले से काफी ज्यादा बढ़े हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है अभी आजकल कि जिसके कारण हाइपरटेंशन जैसे है, बीपी के प्रॉब्लम है, बीपी भी काफी बढ़ा है, डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं और आजकल तो काफी देखा जा रहा है कि जैसे जो यंग जो महिलाएं हैं या जो युवा अवस्था में जा रहे हैं उनको पीसीएस के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो प्रॉब्लम काफी महिलाएं फेस कर रही हैं अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण।
4: तो इस तरह की बीमारियां महिलाओं को हो जा रही है और इससे तनाव से वो घिर जाती हैं, तो बचाव कैसे करें, जो हमारी जीवन शैली है उसको कैसे व्यवस्थित करें, घर के काम और बाहर के कामों में किस प्रकार अपने आप को सामंजस्य करें, क्योंकि महिलाएं घर परिवार को देखती हैं और फिर उनके खान पान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो खान पान और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें हमारी माताएं और बहनें।
5: देखिए, जो भी प्रॉब्लम आजकल महिलाएं फेस कर रही हैं वो बेसिकली अगर हम बोलें तो वो एक अपने जीवन शैली में उनको सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित हैं और अगर महिलाएं अपने परिवार का विकास करती हैं, अपना विकास करती हैं, तो ही उनके परिवार का विकास हो सकता है, तो ही उनके समाज का विकास हो सकता है और उसी से उनके देश का भी विकास हो सकता है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में और इसके लिए महिलाओं को जो भी उनको पसंद है, जो भी एक एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि योगा करना अगर उन्हें पसंद है या मेडिटेशन करना पसंद है, तो वीक में या रोज़ाना कम से कम 20 या 25 मिनट अपना एक्सरसाइज कर सकती हैं या फिर खान पान पे अपना ध्यान दे सकती हैं। अपने ऊपर ध्यान देंगी तभी वो आगे सभी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकती हैं।
4: जी, ये जो आपने बताया कि आजकल की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, किशोरी हैं, उनमें पीसीओडी की जैसा आपने बताया समस्या उत्पन्न हो जाती है, खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान प्रभावित कर रहा है, हम सही समय से खाते नहीं हैं और ज़्यादा समय तक अपने कामों में हम लगे रह जाते हैं, तो कैसे इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और किन किन चीज़ों का सेवन किया जाए।
5: देखिए, इसमें जो आहार उन्हें लेना चाहिए वो प्रोटीन युक्त आहार हो, जैसे कि अगर वो अंडा ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, चना ले सकती हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। मेनली है कि स्ट्रेस ना लें बातों का, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और बाहर के जो जंक फूड हैं जो आजकल बहुत पैकेज्ड आइटम आ रहे हैं वो भी महिलाओं को या युवतियों को काफ़ी असर कर रहे हैं, क्योंकि वो आइटम कहीं ना कहीं जाके उनके हार्मोन में इम्बैलेंस पैदा करते हैं और उनमें कई तरह की बीमारियां फिर आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा, जो पहले नहीं होती थी, मोस्टली 40-50 ईयर्स के बाद ही होती थी, आजकल काफ़ी यंगर जनरेशन में भी हम उन बीमारियों को देख पा रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है।
4: जी, थायराइड या एनीमिया किसी को हो जाता है तो इसका पहचान क्या है, किस तरह से पहचान लें और हम अपना इलाज शुरू कर दें और अपनी जीवन शैली को हम सुधार करें?
5: ये दो तरीके से होता है, या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि दो तीन

0: महीने में अगर उसका महिला का वजन अत्यधिक बढ़ रहा है या फिर अत्यधिक घट रहा है तो महिला को अपने ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं या कम ही अंतराल पर हों बट जल्दी जल्दी होते हैं, और महिलाओं में थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है, पालपिटेशन होने लगता है, शरीर में पसीना आना या बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ये सब अगर कारण आ रहे हैं तो ये थायराइड की पहचान है। और इसका उपाय भी बहुत सिंपल है, मतलब महिलाएं अगर अपने ऊपर ध्यान दें तो इसकी एक छोटी सी गोली आती है जो सुबह नाश्ते के पहले खानी होती है, उसको रूटीन में लें, उसको रूटीन से अलग ना जाएं अपने, और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो वो बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, अनीमिया में भी है कि खून की कमी हो जाती है तो उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने को कमज़ोर महसूस करती हैं, और ख़ासकर गर्भावस्था में जो हम देखते हैं कि गर्भावस्था में अनीमिया जो है लेडीज़ स्पेशली झारखंड में है बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, कि सबको मोस्टली यहाँ पर 8 या 7 हीमोग्लोबिन हम पाते हैं डिलीवरी के दौरान। जब डिलीवरी का प्रॉब्लम आता है तो उसमें महिलाएँ फिर पोस्ट पार्टम हिमरेज के कंडीशन में आ जाती है, ताकि जैसे डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग कभी कभी होती है और उनका लाइफ सेव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो शुरू से ध्यान दें इन सब बातों को, जो आयरन की गोलियां भी मिलती हैं वो भी नियमित रूप से नहीं लेती हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर अगर अच्छे से ध्यान देंगी तो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे
1: जी, और यही बीमारी तनाव का कारण बन जाती
0: जी,
1: है
0: जी जी। PCOD जो है बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें हम ये बोलते हैं कि जो बच्चेदानी रहती है उसमें या फिर अंडाशय जो रहता है उसमें बेसिकली गांठ बन जाता है, जो कि हार्मोन के डिसबैलेंस से होता है, और मोस्टली जो आजकल यंगर जनरेशन है वो जो बाहर का जो खान पान ले रहे हैं, या जो ओबेसिटी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या बाहर के खान पान जंक फूड से, इसका रिजल्ट ज़्यादा बढ़ा है अभी। बेसिकली एडोलेसेंस में ये बोलना चाहेंगे कि वो बाहर का खान पान कम कर दें, एक्सरसाइज करें और वाटर इनटेक अपने बॉडी में बढ़ाएं, इन सब चीज़ों से PCOD या PCOS की जो प्रॉब्लम है, इससे महिलाओं में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ जाती है और चेहरे पे या शरीर पे अत्यधिक बाल आने लगते हैं, स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है गले के पास, एक काला पिगमेंटेशन डिपॉजिट हो जाता है। जब वो अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे तब वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और इसका बेसिकली अगर वो पहले होता है कि जो हम लोग मॉडर्न में दवाइयाँ देते हैं 2-3 महीने देते हैं, अगर उससे वो कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बट वो अपने अगर जीवन शैली को नहीं सुधार पाते हैं तो फिर सर्जरी फिर एक ऑप्शन रह जाता है।
1: यदि नहीं सुधार करेंगे जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। महिलाएं हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या सलाह देंगे हमारे सुनने वाली माताओं बहनों को?
0: महिलाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूक होने की, इसके लिए उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने हेल्थ हाइजीन पे ध्यान दें, और एक प्रॉपर समय पे डॉक्टर से मिलके जो नियमित एक चेकअप होता है वो कराना चाहिए, और अपने जो बोलते हैं हम लोग हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मतलब सबसे ज़्यादा धनी हैं उस मामले में, तो मैं वही बोलूँ कि अपना प्रायोरिटी रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
1: हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना पाठक आज आप इस कार्यक्रम में आए, और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुन रहे थे भेंटवार्ता, महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण और बचाव, भेंटवार्ताकार डॉक्टर अर्चना पाठक, उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के आवाज में गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है अभिमान। इस गीत को शब्दों में पिरोया मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया एच डी परमन ने।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत बत किया ST बर्मन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: सुबह सुरीली कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म मिली से। इस गीत को लिखा योगेश ने, संगीतबद्ध किया एसटी परमन ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की।

लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं फिल्म नौजवान से ये गाना। शब्दों में पिरोया साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किए एसटी परमन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म अभिलाषा से ये गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है आरडी परमन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म आरजू से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दों में पिरोया हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खुला आकाश में सुनते हैं वार्ता। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। वार्ताकार हैं प्रकाश कुमार।
1: झारखंड की रत्न गर्भा धरती न केवल वन संपदा, खनिज संसाधन, नैसर्गिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है, अपितु सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अस्मिता के अक्षुण्णता के लिए भी प्राचीन काल से चर्चित है। इसके वक्षस्थल पर अनेक सिद्धपीठ एवं तंत्रपीठ विराजमान हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अति दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित होने के बाद

एक किलोमीटर पश्चिम सुरभ्य वन में मोहाने नदी के आंचल पर बसा सिद्धपीठ भदलुई की अनुपम महात्म्य भूमि है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटस्थ नगर गया, कोडरमा, झुमरी तिलैया, हजारीबाग, धनबाद एवं चतरा से सड़क मार्ग द्वारा पहुँचने की अनुकूल सुविधा प्राप्त है। यहाँ भगवती भद्रकाली देवी वर मुद्रा धारण करती हुई सौम्य रूपमयी लक्ष्मी स्वरूपिणी विराजमान है। यहाँ मुंडन एवं विवाह मुहूर्त, पूर्णिमा, संक्रांति, नवरात्र, अष्टमी, मंगलवार एवं गुरुवार में श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पूजन अर्चन कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। श्रावण मास में गंगा महाने से कांवर द्वारा जल भरकर सहस्त्र भीम शंकर तथा माँ को अर्पित करते हैं। 23-58 अक्षांश पर स्थित नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में माँ भद्रकाली की आदमकद काले पत्थर की प्रतिमा, दोनों तरफ विष्णु शिव की प्रतिमा एवं अन्य सरस्वती गौरी शंकर देवी देवताओं की लगभग 2 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यहाँ वैष्णव पूजा का प्रावधान है। संपूर्ण विश्व में स्वयंभू शिवलिंग की विशेषता यह है कि भूरा लाल पाषाण से निर्मित इस आदमकद शिवलिंग में 1008 छोटे लिंग उत्कीर्ण हैं। ब्रह्मा विष्णु की श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यही शिवलिंग आद्यांत हो गया था। यही प्राच्यकलापूर्ण पाषाण सिंह द्वार सदियों से बिना टेक का खड़ा है, जिसके तत्व से युगल नाग दंपति प्रकट होकर कभी कभी दूध का पान करते हैं। यही विशाल नंदी वृक्ष विराजमान है, जो प्राचीन मूर्तिकला की एक धरोहर है। श्रावण एवं प्रदोष एवं शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ उत्तर महाने से जल भरकर भक्त यहाँ अर्पण करते हैं। जहाँ एक जलधारा से सहस्त्र शिव पूजन का अमृत अक्षय फल प्राप्त किया जाता है। भीमशंकर सा समान आकार प्रकार के शिवलिंग रूपी बौद्ध स्तूप में बुद्ध मूर्ति उत्कीर्ण है एवं मस्तक पर जटा सा स्तूपाकार पाषाण एक गड्ढे के ऊपर स्थित है, जिसे उठाया जा सकता है। काले पत्थर से निर्मित इस लिंग स्वरूप चैत्य के जटा पर जल का उद्गम आज भी वैज्ञानिक युग में शोध का विषय है। 2 बुद्ध प्रतिमा तप एवं 2 प्रणाम एवं अन्य 486 तप मुद्रा में है। कहा जाता है शिव जी ने इसी स्थान पर केतकी को श्रापित किया था। इस घटना के बाद शंकर जी पर केवड़ा पुष्प अर्पण नहीं किया जाता है, किंतु विष्णु पर कार्तिक मास में अर्पण पुण्यप्रद है। 6 सदी पूर्व विष्णु के नवम अवतार भगवान बुद्ध की तपोभूमि प्रमाणिकता कोटेश्वरनाथ बौद्ध मूर्ति स्तूप एवं धर्म ग्रंथों में इति सोई से मिलता है। यह स्थान बुद्धिस्ट सर्किट के तहत है। हिंदू इन्हें कोटेश्वरनाथ की संज्ञा से पूजन कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। युगलचरण मुख्य मंदिर से 200 फीट पश्चिम पत्थर पर उत्कीर्ण युगलचरण हिंदू विष्णु पद कहकर पूजन करते हैं, किंतु वस्तुतः यह पवित्र चरण 10 BC जैन तीर्थंकर शीतलनाथ इतलखोई एवं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्पष्ट करता है। यहाँ से मंजूषा भी प्राप्त हुई है। मुख्य मंदिर एवं सहस्त्र भीम शंकर के बीच हनुमत लाल जी की मनमोहक प्रतिमा भक्तों को सदैव आह्लादित करती है। कल्याणेश्वर शिवलिंग मंदिर प्रांगण में विशाल वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग की उपस्थिति शिव भक्ति के प्रगाढ़ संगम को अवलोकित करता है। उत्तरवाहिनी मोहाने कोटेश्वरनाथ से 800 फीट उत्तर दिशा में नदी धारा उत्तर दिशा में बहकर गंगा का निरूपण करती है। श्रावण एवं प्रदोष में यहाँ से कांवर द्वारा जल उठाया जाता है। भीम शंकर से 1000 फीट पूर्व तालाब के छोर एवं इटखोरी रास्ते पर करुणामयी माँ एवं द्वारपाल की उपस्थिति दर्शनीय है। संग्रहालय में यहाँ 419 से अधिक मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उसी तरह कोल्हुआ पहाड़ स्थित कौलेश्वरी मंदिर चतरा डोभी राजमार्ग पर जोरी पक्या मोड़ से 10 किलोमीटर पूर्व या घंघरी से 6 किलोमीटर पर दंतार से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पहाड़ी पथ तय कर सूरत की राजधानी गयासुर की तपोभूमि, जैन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोस्थली, राजा विराट की राजधानी पांडु स्मारक नगर कोल्हुआ पहाड़ 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला पर्वत शिखर पर सनातन जैन बौद्ध के तपोस्थल प्रेमांगम को संजोए हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के नींव को लिए अक्षांश 23 बाई
58 के समीप खड़ा है। यह सिद्ध

0: पीठ, आयंग से ऐरुगेरवा, लिंग से हिरिंग, क्लिंग से केदली, गांव से किलित है। नवरात्र एवं तंत्रकाल में साधक तांत्रिकों की साधना देखी जा सकती है। संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। यहाँ महादेव, पाताल गंगा, महानिर्वाण गुफा, पहाड़ी बाबा की गुफा, मितवा पहाड़ गुफा, घोड़दौड़ युगलचरण, वरुण उर्फ राम गुफा, गाय घाट, बाण गंगा, तारा देवी, द्वारपाल, भीम भार, गर्ग मुनि की तपोभूमि एवं नीलाजन नदी तथा राजमार्ग के साथ साथ 10 किलोमीटर चलती लीलाजन तथा 50 से 100 किलोमीटर चारों तरफ वन क्षेत्र से हरित पहाड़ियां, नदियों, इक्के दुक्के हरे भरे गांव और भी प्रसन्नता प्रकृति को देती है। वसंत नवरात्र नवमी में प्रत्येक साल 5 दिन का विशाल मेला एवं विवाह मंडप मुहूर्त में हजारों श्रद्धालु, विदेशी पर्यटक चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों से दिसंबर से जून के बीच आकर आनंद प्राप्त करते हैं। काले पत्थर पर निर्मित 30 इंच की उज्ज्वलायमान प्रतिमा, जिसके दाहिने हाथ में गदा, त्रिशूल एवं बाएं अंग में सुदर्शन चक्र तथा अनामिका से महिषासुर का पूंछ पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ से महिषासुर पर त्रिशूल चुभाती माँ मस्तक पर अर्धचंद्र लेकर विराजमान है। यहाँ भद्रकाली देवी की तरह आंख, कंठ एवं बिंदिया वस्त्राभूषण भी चढ़ाया जाता है। यह देवी असुरों की आराध्या तथा गयावाल की कुलदेवी एवं पुत्र प्रदायी देवी के रूप में पूजित है। ज्ञातव्य है कि यहाँ से भी मूर्तियों की तस्करी हुई है। भैरवनाथ उर्फ पार्श्वनाथ, जहाँ बौद्धिक सनातन इन्हें भैरव की मुद्रा में इन्हें द्वादश भैरव से पूजित हैं, वहीं जैन विद्वान इन्हें पार्श्वनाथ की मुद्रा को स्पष्ट करते हैं। दोनों मतानुरागी भक्ति भाव से पूजन प्रेम पूर्वक करते हैं। यहाँ भीम भार भी स्थित है, एक और देवी की मूर्ति पूजित है। भूतनाथ मुख्य मंदिर से पूरब पहाड़ी पर विशाल काला शिवलिंग विराजमान है। जैन मंदिर विवाह मंडप के नीचे पहाड़ी तट पर पार्श्वनाथ जी के विशाल प्रतिमा जैन मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। सरोवर पहाड़ी चोटी पर लगभग 490x210 फीट क्षेत्र में फैली रक्त कमल पुष्प पूर्ण सरोवर भीषण गर्मी में भी शीतल जल पूर्ण रखता है। सतबरवा सरोवर से दक्षिण मितवा पहाड़ के समीप 7 बड़ी गुफा एवं आकाश लोचन के पूर्व 7 गुफा पांडवों के अज्ञातवास में राजा विराट की राजधानी का निरूपण करते हैं। दूसरा सतघरवा आकाश लोचन के नीचे भी गुफा है। यहाँ वानरों एवं हनुमान झुंड को भी देखा जाता है। पांचों पांडव, दसों अवतार आकाश लोचन के नीचे पश्चिम पहाड़ी तल पर विशाल चट्टान पर 5 तपस्वी मुद्रा में उत्कीर्ण बुद्ध मुद्रा एवं 5 वीर मुद्रा में नग्न हैं। अर्जुन ने अज्ञातवास के बाद अपनी वीरता का प्रमाण लौह चट्टान में तीर संधान कर दिखाया था। आज भी चट्टान पर वाण के प्रहार का निशान एवं सूक्ष्म जल स्रोत इसका प्रमाण है। मंदिर के पश्चिम मात्र 2 फीट गहरा जल स्रोत से निरंतर शीतल जल बहता रहता है। जितना अधिक जल निकाला जाए जल स्तर घटता नहीं है। यहीं नीचे शिवलिंग भी है जो केदली के रास्ते में है। संपूर्ण पहाड़ी शिखर पर 30x10 फीट चार दीवारी के भग्नावशेष सामरिक नगर को बतलाते हैं। इस तरह इटखोरी का भद्रकाली मंदिर एवं हंटरगंज का कौलेश्वरी मंदिर झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर समय समय पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
1: खुला आकाश में सुन रहे थे वार्ता, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। वार्ताकार थे प्रकाश कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कुछ कुछ कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें चर्चा सुनिए वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डिवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, नेशनल एंटी टेररिज्म डे पर भी वार्ता होगी, साथ ही आप फिल्म संगीत का भी आनंद उठाएंगे। और 5:30 पर कार्यक्रम होगा श्रमिक लोक, इसमें चर्चा सुनेंगे हिंसा नहीं शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाएं, प्रगति और विकास को गति देने में सांस्कृतिक विविधता की भूमिका अग्रणी। टैगोर की कविता से राष्ट्र की आवाज तक, आकाशवाणी नामकरण की कहानी। श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम ई श्रम पोर्टल। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

किसान वाणी कार्यक्रम 6:02 पर। इसमें चर्चा सुनिए, बदलते मौसम के अनुरूप खेती करें। आज की बात, धान की सीधी बुआई, विशेषज्ञ श्री ओम प्रकाश शर्मा, भेंटकर्ता मनोज कुमार, नई उम्र की नई फसल रोहन कुमार महतो, बैगन की खेती ग्राम करांची मेड़ो रांची से, भेंटकर्ता अरविंद कुमार मिश्रा, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम 6:32 पर। इसमें चर्चा सुनिए, एकल परिवार में बुजुर्गों का अकेलापन और सूचना, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। हिंदी वार्ता सुनेंगे, झारखंड की खनिज संपदा और झारखंड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वार्ताकार करम सिंह मुंडा, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम 7:15 पर। आज का ये कार्यक्रम हो भाषा में। चर्चा सुनिए, समय के महत्व को पहचाने, कृषि कार्यों के दौरान सावधानी बरते, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। सूर भारती कार्यक्रम 7:45 पर। वार्ता सुनिए, भारतीय संस्कृति प्रसारणे दृश्य श्रव्य मध्यमाम योगदानम, वार्ताकार धनंजय वासुदेव त्रिवेदी। रजनीगंधा 8:00। रात 8:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिए, कलाकार होंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनसे सुनेंगे गिटार पर राग बागेश्री में आलाप और गत, मध्य लय में रचना छप ताल में, द्रुत लय में रचना तीन ताल में निबद्ध होंगे। गिटार पर रागी मिश्र गारा में धुन। ये थे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी।

0: और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है।

0: नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी

0: जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है, सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Phalta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in

0: rain-affected match. Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Ravan Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the 4th spot in the points table. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान के सारंडा जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के एक बड़े समूह ने हथियार डाल दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: झारखंड के नक्सल इतिहास में आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नक्सलियों के एक बड़े समूह ने सुरक्षा बलों के सामने घने जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आज सुबह रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इनका विधिवत आत्मसमर्पण कराया जाएगा। इस सामूहिक सरेंडर से सारंडा इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई है, जिससे राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने और रेट रिवीजन के लिए जानबूझकर काम लटकाने वालों के जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और विधायकों के शिकायतों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
4: ग्रामीण विकास में मेनली जिन चीजों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित, अब वो आवास को लेकर के है, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, JSLPS की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
2: रांची में आज और कल कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि कल समापन सत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। रांची में आयोजित CSR कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कंपनियां CSR राशि का उपयोग फैक्ट्री और माइंस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी घोषणा की।
5: जो CSR का पैसा दूसरे जगह यूज करता है, गर्दा हम खाते हैं, संकट हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाता है और इसका नियंत्रण जो है कोई और करता है, इस पैसा को दूसरे देश में दूसरे राज्य में खर्चा किया जाता है, लेकिन हमको राज्य के हित में भी देखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज जो है पहला मीटिंग किए हैं।
2: बैठक में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और CCL के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार और XLRI जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा वन आधारित और सर्कुलर इकोनॉमी के अवसरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। इस अवसर पर प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और GIIDCO के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदान

0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से आगामी 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने बूथ पर जाकर नाम की जांच कर सकेंगे। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जिला प्रशासन के सहयोग से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक विशेष मतदाता और आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को चुनावी व पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
1: SIR का मैपिंग हो रहा है, वोटर आईडी और आधार जो है नए जिसको बनाना है नए बन रहे हैं। अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस हो रहे हैं। 2 साल बाद आज हम लोग ने ये कैंप लगाया है और हमारे मेंबर्स की और लोगों की डिमांड थी कि वोटर आईडी का करेक्शन कराना है। आधार में बहुत से करेक्शंस है और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूएंसी में थे अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूएंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है।
0: सीबीआई की धनबाद टीम ने GCST के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है। हजारीबाग पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी दुर्गा बेदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 9 मामलों में फरार चल रहे इस उग्रवादी को गिद्दी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कल पलामू 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। रांची समेत 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर FC JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओडिशा FC के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलेगी। लीग टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए जमशेदपुर FC को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम फिलहाल 12 मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के हवाले से लिखा है, राज्य में 4-5 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सबसे बड़ा सरेंडर, 25 नक्सली डालेंगे हथियार। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में। दैनिक जागरण लिखता है, 7 ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़ेंगे 20 अतिरिक्त कोच, 2 और कतार में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और XLRI जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए MOU, नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार, आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर FC और ओडिशा FC के बीच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज के प्रसारण में आपके साथ है रेणु। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आइए सुनते हैं सुकुमार और साथियों से खोरठा लोकगीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं सुकुमार और साथियों से खोरठा लोकगीत।

अभी आप सुकुमार और साथियों से खोरठा लोक गीत सुन रहे थे। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। शुरुआत करते हैं फिल्म हम सब उस्ताद हैं से, इस गीत से। आवाज किशोर कुमार और साथियों की है। इस गीत को लिखा असद भोपाली ने, संगीतवत किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: सारे मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा से ये गाना। किशोर कुमार की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।

0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आइए सुनते हैं फिल्म खुशबू से ये गाना। शब्द रचना गुलजार की, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की।

आइए सुनते हैं फिल्म सिलसिला से ये गाना। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा, संगीतबद्ध किया शिव हरि ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं फिल्म कभी कभी से गाना। शब्दों में पिरोया है साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया खयाम ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म श्री 420 से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है। शब्दों में पिरोया शैलेंद्र ने, संगीत वत किया शंकर जय किशन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शास्त्रीय संगीत बस थोड़ी देर में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं सविता राय, इनसे सुनते हैं राग नंद में खयाल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं आज हुन आए। द्वित रचना 3 ताल में निबद्ध है, बोल हैं सजन अब तो आजा। तबले पर संगत करेंगे श्यामानंद झा, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

0: अभी आप सविता राय से राग नंद में खयाल गायन सुन रहे थे। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थे। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम विज्ञान जगत बस थोड़ी ही देर में।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। इसमें सुनते हैं चर्चा, ओवरटेक तेज गति से वाहन चलाने से बचे। साथ ही सुनेंगे भेंटवार्ता, हीट वेव और लू से बचाव एवं उपचार। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर पीके गुप्ता, इनसे बातचीत करेंगे बसंत कुमार। और जीवन परिचय में सुनेंगे हमरी देवी का और वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि ओवरटेकिंग और तेज गति से वाहन चलाने से क्यों हमें बचना चाहिए इसके बारे में। और इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं हीट वेव और लू से बचाव के तरीके और इसके उपचार के बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम बात करेंगे ड्रोन के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओवरटेकिंग और तेज गति से वाहन चलाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तो आज के समय में गाड़ी हमारे लिए सुविधा का सबसे आसान और सरल तरीका है, साधन है। हमें जब भी कहीं जाना हो या कुछ काम के लिए बाहर निकलना हो या लंबी यात्रा पर निकलनी हो, हमें गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है और हम वाहन से ही दूर की यात्रा करते हैं। लेकिन अगर हम गाड़ी चलाने के नियमों का पालन नहीं करें, इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करें, तो हमारे लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और दूसरे लोगों के लिए भी काफी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इस बात से है कि हर व्यक्ति के पास गाड़ी है और गाड़ी चलाने के साथ साथ उन्हें कई बार ऐसी स्थिति से भी गुजरनी पड़ती है कि वो परेशान हो जाते हैं और ये विचार करने लगते हैं कि गाड़ी चलाएं या फिर हम गाड़ी छोड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोग ओवरटेकिंग करके दिखावा करने के लिए कई बार काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई सारे लोग इसी तेज गति के कारण, ओवरटेकिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए जब भी सड़क पर गाड़ी लेके निकले तो उन गाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और सड़क पर चलने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति के लिए भी काफी खतरनाक साबित होता है। ओवरटेकिंग यानी आगे चल रहे वाहन को पार करना, ये तभी सुरक्षित माना जाता है जब सही नियमों का पालन किया जाए। लेकिन आजकल कई लोग बिना संकेत दिए गलत दिशा में या तो गाड़ी मोड़ देते हैं या फिर ओवरटेक करने के लिए काफी जल्दबाजी कर बैठते हैं। गलत ओवरटेकिंग के कारण सामने से आने वाले वाहन से टक्कर हो सकती है, कई बार बाइक सवार या पैदल यात्री भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। खासकर हाईवे पर तेज गति और लापरवाही से ओवरटेक करना बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर हम बात करें बीते कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की, तो ओवरटेकिंग और तेज गति सबसे पहले जो समस्या है वो निकल कर आती है कि लोग जल्दबाजी में कहीं पहुंचने के लिए काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा कई बार लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग के समय और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी का उपयोग करते हैं और ये सारी जो चीजें हैं आजकल खास करके युवा वर्ग में काफी देखी जा रही है। और स्टंट करना, रेसिंग करना, ये सारी चीजें जो है आजकल के युवाओं में खासकर ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए अगर इस तरीके की चीजों से बचना है तो ओवरटेकिंग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तेज गति से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो घर से जल्दी निकले तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी इस संयमपूर्ण गाड़ी चलाने के तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे। तो ये हमने बात कर ली कि ओवरटेकिंग और तेज गति से वाहन चलाने से क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो है हीट वेव और लू से बचाव के तरीके और इसके क्या उपचार हैं इसके बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक, ऑर्किड मेडिकल में कार्यरत हैं। और सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: जैसा कि अभी वैसे तो इस बार गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है झारखंड में और पूरे देश भर में गर्मी का जो असर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम मौसम के अनुसार रहते हैं, मौसम के अनुसार खाते पीते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी सारी चीजों को करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति काम करता है, बाहर निकलता है और अपने सभी कामों को करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में किस तरीके का खान पान रखना चाहिए लोगों को, किस तरीके से रहना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले बताएं।
1: देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हीट वेव क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है और लू लगना क्या है।
0: जी
1: तो ये बात समझने के लिए समझना चाहिए कि आदमी के शरीर जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो ब्रेन से होता है, हाइपोथैलेमिक सेंटर होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, क्योंकि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी पैदा होती है तो हीट पैदा होती है, तो हीट जो है उसको जो है डाइल्यूट करता है। कैसे करता है, आप देखते हैं पसीना निकलता है, यूरिन पास होता है, तो ये सब चीजें जो है बॉडी मैकेनिज्म है उसको ठंडा करने का। तो अगर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करता रहता है तो नॉर्मल रहता है चीजें जो है, लेकिन जब कोई बीमारी होती है, जब कुछ होता है जैसे बुखार आता है तो भी वो थर्मो रेगुलेटरी पूरा काम करता है, लेकिन उससे भी जब ज्यादा होता है तो बुखार होता है तो आप दवा देते हैं, आप उसका रीजन समझते हैं। अब ये जो हीट स्ट्रोक हीट वेव है ये तभी होता है जबकि बहुत ज्यादा देर आदमी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह जाए, पानी उसके शरीर के अंदर ना हो, पानी नहीं पिया हो, भूखा हो, खाना भी नहीं खाया हो, तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो वो हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें जब टेम्परेचर 45 डिग्री, मतलब जो आप समझिए कि जब आपको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए बॉडी का टेम्परेचर, तो आप समझिए कि आप हीट वेव में चले गए हैं।
0: जी।

0: तो उस समय बॉडी जो है रेगुलेट करना बंद कर देती है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम एक तरह से काम नहीं करता है। तो अब क्या करना है आपको, ये सोचना है उस समय।
1: जी
0: तो लू से बचना तो एक छोटा छोटा धीरे धीरे का स्टेप होता है, वो स्टेप काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे तुरंत हीट स्ट्रोक नहीं होता है, जैसे पहले हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन से पहले भी क्रैम्प्स होता है, आदमी को थोड़ा सा चक्कर आता है, आदमी को वोमिटिंग लगती है, आदमी को फील होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई 1 मिनट में हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है।
1: जी
0: फिर हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन होता है कि आदमी एकदम काम करने का मन नहीं करता है, चक्कर आने लगता है, बैठ जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है कि उसकी मजबूरी कि उसी धूप में काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये स्टेज होती है,
1: जी
0: जिस स्टेज पर आप उसको रोक लीजिए। अब रोकने का क्या तरीका है कि आप ठंडे में रहिए, हवा है, आप खूब पानी लीजिए, पानी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए, क्योंकि सोडियम का ही ज्यादातर जो है
1: जी
0: डिप्लीशन होता है। तो अगर आपने उसको अपना ही उपचार शुरुआत से कर लिया, हीट स्ट्रोक होने से पहले कर लिया, तो बचाव भी संभव है। तो ये होता आदमी के गलती से ही है, क्योंकि वो मजबूर है, जैसे मजदूर है
1: जी
0: या बच्चा है जो नहीं जानता है कि भाई हम धूप में खेल रहे हैं, हमको ऐसा हो सकता है। आदमी है, काम कर रहा है, उसने सोचा अच्छा अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, आधा घंटा और काम कर लो, 1 घंटा और काम कर लो, उसका मालिक खड़ा हुआ है, ठेकेदार खड़ा हुआ है, नहीं तुम 1 घंटा और काम करके आओ, तो वो लू
1: जी
0: लग सकता है। तो लू लगना मतलब हीट स्ट्रोक में चले जाना। तो बचाव के लिए आपको बता दिया कि हर स्टेप में कैसे करना है। और जहां तक रहन सहन की बात है, गर्मी का मौसम आ गया, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग हैं, तो ये समझना चाहिए कि जितने गाढ़े कपड़े हैं, गाढ़े कलर के और स्पेशली काले कलर के कपड़े हैं, वो सब हीट एब्जॉर्बेंट होते
1: जी
0: हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप ऐसे देखे होंगे कि शेख लोग जो हैं जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं, यहाँ
1: जी
0: तो रांची का टेम्परेचर 30, 35, 40 रहता है, या 45 पहुंच जाएगा, वो तो हमेशा ही 55 में रहते हैं। तो आप देखते हैं ना कि एकदम सफेद सफेद
1: जी
0: कपड़े पहने रहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो हीट को अंदर नहीं आने देता है। तो उस तरह के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ये नायलॉन, सिंथेटिक, टेरेलिन, टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, और बहुत टाइट कपड़े भी गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। ये बचाव के हैं, घर से निकलें, खाना खा लें, पानी पी लें, भरपूर पानी पिएं, बीच में कभी भी प्यास लगता है तो रुक के पानी पिएं।
1: यानी कि खाने पीने और जो बॉडी को ठंडा रखने का काम है वो जरूरी है गर्मी में।
0: वो जरूरी है, आप मतलब अगर बचाव चाहते हैं,
1: हाँ,
0: हर चीज में क्या है, बचाव पहले,
1: जानकारी होनी चाहिए।
0: हाँ जानकारी होनी चाहिए, फिर सबको लागू होना चाहिए।
1: तो अगर हम लोग कहें कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है बाहर काम करना, तो वैसे लोगों को खाने पीने की जो चीजें हैं गर्मी के समय में, किन किन चीजों को खान पान में लेना चाहिए
0: जैसे
1: सकता है?
0: मैंने अभी आपको बताया, कभी भी गर्मी में खाली पेट जो है आदमी को काम नहीं करना चाहिए। जितना खाली पेट होगा उतना एग्जॉशन होगा, उतना थकेगा। अगर आदमी थोड़ा खाना, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए,
1: जी
0: हमेशा आदमी को गर्मी में थोड़ा कम खाना चाहिए, और खाना हल्का खाना, और जैसे आप फल समझिए, जैसे खीरा, ककड़ी, सस्ते फल भी आते हैं
1: जी
0: जिसके अंदर की वाटर बहुत होता है, वाटर कंटेंट बहुत होता है, तरबूज है, खरबूज है, इस तरह के फल अगर लें, दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, ये सब चीजें लिक्विड चीजें ताकत भी देती हैं और रिहाइड्रेट भी करती हैं, अब बहुत देर तक करती हैं।
1: जी
0: सत्तू है, जैसे सत्तू घोल करके आदमी पीता रहे, थर्मस में रख ले, बॉटल में रख ले, क्योंकि खराब भी 2-4 घंटे नहीं होता
1: जी
0: है। तो ये जो हल्के हल्की खाना है, दही है, सत्तू है, ये सब जो है ना न्यूट्रिशन भी देता है, ताकत भी देता है, रिहाइड्रेट भी करता है, और लू लगने का कोई खतरा भी नहीं होता।
1: अभी गर्मी के समय में छोटे जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन लोगों के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए गर्मी में इनको?
0: जो सावधानी बड़े लोगों का है, करीब
1: हाँ
0: करीब वही सावधानी बच्चों का है। बच्चे जल्दी मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि हम धूप में इतना देर खेल रहे हैं, हमको प्यास लगी हुई है, उनका तो खेलने का है।
1: जी
0: तो मदर फादर को ही मतलब ध्यान देना होगा कि बच्चा समय से पानी पिए, अच्छे से पानी पिए, पानी पीने का मन नहीं करता तो शरबत पिए, शरबत पीने का मन नहीं करता तो लस्सी पिए, जूस पिए, फ्रूट जूस पिए, लिक्विड किसी भी फॉर्म में, अगर लिक्विड किसी भी फॉर्म में बच्चा जो है 1 से 1.5 लीटर जो है अगर पी लेता है तो मतलब हाइड्रेशन उसका अच्छा रहेगा, तो उसे कहीं भी खेलेगा कूदेगा कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तो बच्चे को बांध के कोई नहीं रख सकता कि
1: जी
0: नहीं तुम एसी में ही रहो, पंखा में रहो, तुम जरा भी नहीं खेलने जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए गर्मी में कैसे रहना उनको जरूरी?
0: कोई नहीं, उनका वही है कि एक थोड़ा लिमिटेशन वर्क का हो ही जाता है, मतलब 6 मंथ से ज्यादा या 3 मंथ हो या 9 मंथ हो, तो लिमिटेशन तो वैसे ही उनका कम हो जाता है, बाकी खाते पीते ही रहें, वही एक बचाव है।

0: कोई इसमें दवाई तो लेनी नहीं है। दवाई ले दे करके वही है कि खाना पीना,
1: जी
0: ढंग का खाना पीना रहेगा, स्वस्थ खाना रहेगा, बाजार की चीजें नहीं रहेंगी। बाजार की चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, गर्मी के दिनों में किसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए,
1: जी
0: तो ये तो अलग चीज हो गई, हीट स्ट्रोक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए तो बहुत जल्दी हो
1: जी
0: जाएगा कि पता चले वोमिटिंग भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, और साथ में धूप में काम भी करना पड़ रहा है, धूप में जाना भी पड़ रहा है।
1: यानी कि खान पान से लेकर के आप जो कपड़े पहनते हैं उन सभी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या नशा का सेवन करते हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या उन्हें गर्मी के समय में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
0: देखिए, ऐसा कोई एक्लेमेटाइजेशन एक चीज होती है। एक्लेमेटाइजेशन जैसे कुछ लोग हैं बहुत जल्दी एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, जैसे जिनकी आदत होती है बार बार एसी में रहना, बाहर निकलना, बाहर निकल करके फिर अंदर आना, तो अपने को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, उनको आदत सी पड़ जाती है।
1: जी
0: लेकिन जो कोई पहली बार ऐसा हुआ हो कि मतलब जो है अचानक एसी में रहा हो और फिर धूप में चला जाए, तो उसको हो सकता है कि एक्लेमेटाइजेशन तुरंत नहीं हो, तो उसकी उस वजह से उसको तुरंत धूप लग जाए, तुरंत प्रॉब्लम हो जाए। हार्ट के लोगों को क्या है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, डरे भी बहुत रहते हैं, तो उनको सेफ्टी तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अब इसमें ये तो है नहीं कि बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा खाना खाना, ऐसा कुछ नहीं है।
1: सेफ्टी में उनको क्या ध्यान रखना
0: वही
1: चाहिए?
0: सेफ्टी में उनको वही है कि ओवर एग्जर्शन नहीं हो, कभी भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए गर्मी के दिन में। इनफैक्ट किसी को भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। ओवर एग्जर्शन करने से अगर साथ में कोई भी एसोसिएटेड फैक्टर होगा तो उसको बढ़ने के चांस हो जाते हैं,
1: जी
0: इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ओवर एग्जर्शन नहीं करे, रिलैक्स होकर के वही खाना पीना जो है, हमेशा रिहाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। कि पानी जो है, पानी जूस मट्ठा जैसे हमने बताया कि लिक्विड जितनी चीजें
1: लिक्विड
0: हैं,
1: फॉर्म्स।
0: जरूरी नहीं कि केवल पानी ही ले। अगर ये है कि लिक्विड फॉर्म में जो है लेता रहेगा तो सफिशियंट जो है 3 to 4 liters अगर जो है गर्मी के दिनों में दिन भर में आदमी ले लेता है, ये सफिशियंट।
1: सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गर्मी में हम इस बात को भूल जाते हैं कि कब पानी पीना है कब खाना है, और काम की धुन में अक्सर ऐसा लोग करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि गर्मी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है और सरकार की तरफ से भी इस पर काफी नियंत्रण के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन आप और हम जब भी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के सभी उपायों को करके निकलें, ताकि गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिल जाए। अगर आप सावधान रहते तो आप लू लगने से और हीट वेव के खतरे से बच सकते हैं, और खान पान से लेकर के हर व्यवस्था अगर आप बाहर निकल रहे
0: फिर
1: हैं।
0: दूसरा, ये जो अभी सबके मन में भ्रम है कि इलेक्ट्रॉल
1: जी
0: इलेक्ट्रॉल खरीद लें पी लें, इलेक्ट्रॉल
1: हाँ
0: खरीद लें पी लें, नहीं, वो भी बहुत ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। बच्चे को तो ज्यादा ही नुकसान हो सकता है, बड़े भी अगर उसको लेंगे बिना वजह बेवजह, ना डायरिया भी नहीं है, वोमिटिंग भी नहीं है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉल पिए जा रहे हैं, तो वो नुकसान भी कर सकते। तो सबसे अच्छा देसी इलाज है कि शिकंजी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए टेस्ट वाला, आप इलेक्ट्रॉल के लिए क्यों भागे जा रहे हैं।
1: तो आज इतना कीमती समय निकालकर आप आए और हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली आपसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में हीट वेव और लू से बचाव के क्या तरीके और उपचार हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आज हमें डॉक्टर पी के गुप्ता। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रयोगों से मानव जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का कार्य किया। इनके द्वारा किए गए प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम्फ्री डेवी का जन्म 17 दिसंबर सन 1778 को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल क्षेत्र के छोटे से नगर पेंजिस में हुआ। इनके पिता एक साधारण कारीगर थे और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन डेवी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और काफी जिज्ञासु छात्र थे। इन्हें प्रकृति, पेड़ पौधों और रसायनों से जुड़े छोटे छोटे प्रयोग बहुत आनंद देते थे। बचपन में ही इन्हें ये समझ आ गया था कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा माध्यम विज्ञान है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। जब ये किशोर अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया, इसलिए इन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। बाद में इन्होंने एक डॉक्टर और सर्जन के यहाँ प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। यही वो समय था जब इनकी रुचि चिकित्सा और रसायन विज्ञान की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई। काम के दौरान हम्फ्री डेवी को वैज्ञानिक पुस्तकों और प्रयोगों का अवसर भी मिला। इन्होंने स्वयं अध्ययन करके रसायन विज्ञान की गहरी जानकारी प्राप्त की। जल्द ही इनकी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगी और ये काफी प्रसिद्ध भी हो गए। इन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध ब्रिस्टल न्यूमेटिक इंस्टीट्यूशन में काम करने का अवसर मिल गया। यहाँ पर इन्होंने विभिन्न गैसों का प्रयोग शुरू किया। उस समय वैज्ञानिक गैसों के प्रभावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हम्फ्री डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस पर काफी शोध किया। यह गैस सूंघने पर मनुष्य को हंसी और आनंद का अनुभव कराती थी, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहा जाने लगा। हम्फ्री डेवी ने ये भी खोजा कि ये गैस दर्द कम करने में सहायक है या नहीं। आगे चलकर इसी खोज का उपयोग ऑपरेशन और दंत चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में किया जाने लगा। हम्फ्री डेवी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विद्युत और रसायन विज्ञान को जोड़कर नए तत्वों की खोज करना है। उस समय वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि बिजली की सहायता से रासायनिक पदार्थों को अलग किया जा सकता है। हम्फ्री डेवी ने विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की तकनीक का उपयोग करके कई नए तत्वों को अलग करने में बहुत सफलता पा ली। इन्होंने पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्वों को पहली बार शुद्ध रूप में प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोशियम जैसे तत्वों पर भी काफी शोध किया। इनकी इन खोजों ने आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव को काफी मजबूत करने का काम किया। आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो तकनीकें उपयोग होती हैं उनमें हम्फ्री डेवी के प्रयोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 19वीं शताब्दी में कोयला खदानों में काम करना काफी खतरनाक माना जाता था। खदानों में मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसें जमा हो जाती थी और साधारण दीपक की लौ से विस्फोट हो जाया करते थे। इन दुर्घटनाओं में अनेक मजदूर भी अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन हम्फ्री डेवी ने इस समस्या को समझा और एक विशेष प्रकार का सुरक्षित दीपक यानी कि लैंप बनाने का काम किया। इस दीपक में लौ को महीन धातु की जाली से ढक दिया जाता था जिससे गैसों में आग नहीं फैलती थी। इस आविष्कार ने हजारों खनिकों की जान बचाने का काम किया। इनका ये आविष्कार आज भी विज्ञान और मानव सुरक्षा के इतिहास में एक महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। हम्फ्री डेवी की प्रतिभा के कारण इन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइट की उपाधि दी गई। ये हमेशा से मानते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल नई चीजों को खोज करना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना है। हमेशा युवाओं को प्रयोग करने, सवाल पूछने और नई खोज करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। लगातार प्रयोगों और रसायनों के संपर्क में रहने के कारण इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और 19 मई सन 1829 को स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया। हम्फ्री डेवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो व्यक्ति को नहीं रोक सकती। जिसके अंदर सीखने और कुछ नया करने का जुनून हो वो हमेशा आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज खोज और आविष्कार में ड्रोन के बारे में। तो अब एक ऐसी मशीन की बात करने वाले हैं जो हवा में उड़ती है और कहीं भी पहुंच सकती है। ये देखने में जितनी छोटी है उतनी ही ये कारगर भी है और बहुत इसके उपयोग है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रोन की। ड्रोन एक ऐसा मशीन है जो मानव रहित हवाई जहाज है और इसे UAE जैसे विमानों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे विमान होते हैं ये जिनमें कोई चालक दल या यात्री नहीं होता। ये स्वचालित ड्रोन या दूर से संचालित वाहन RPV हो सकते हैं। UAV
नियंत्रित गति और ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका में पहले पायलट रहित वाहन विकसित किए गए थे। ब्रिटेन के एरियल टारगेट एक छोटे रेडियो नियंत्रित विमान का पहली बार मार्च 1917 में परीक्षण किया गया था, जबकि कैटरिंग बग के रूप में जाना जाने वाला अमेरिकी हवाई टॉरपीडो पहली बार अक्टूबर 1918 में उड़ा था। हालांकि दोनों ने उड़ान परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखाए थे, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों का परिचालन में उपयोग नहीं लिया गया। युद्ध के बीच की अवधि में मानव रहित विमानों का विकास और परीक्षण जारी रहा। 1935 में ब्रिटिशों ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए लक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने वाले कई रेडियो नियंत्रित विमान बनाए। ऐसा माना जाता है कि ड्रोन शब्द का इस्तेमाल इसी समय शुरू हुआ, जो इन मॉडलों में से एक DH-82B क्वीन बी के नाम से प्रेरित था। रेडियो नियंत्रित ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निर्मित किए गए थे और लक्ष्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग भी किया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल कई नई भूमिकाओं में भी किया जाने लगा था, जैसे कि युद्ध में प्रलोभन के रूप में काम करना, तय लक्ष्यों पर मिसाइल दागना और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के लिए। हाल के वर्षों में ऐसे मॉडल विकसित किए गए हैं जो लंबी उड़ानों में ईंधन भरने की समस्या से निपटने के लिए सौर ऊर्जा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके काम करने लगे हैं। ड्रोन अब कई काम कर रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी, फिल्मांकन और सामान पहुंचाना भी इसमें शामिल हो चुका है। इनका उपयोग अधिकतर उन क्षेत्रों और भूभागों में निगरानी के लिए किया जाता है जहां सैनिक सुरक्षित रूप से नहीं जा पाते, लेकिन इनका उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता है और इन्हें संदिग्ध आतंकवादियों को मारने का श्रेय दिया जाता है। तो ड्रोन क्या है ये हम सभी जानते हैं। आज ड्रोन हम सभी ने देख रखा है, इसके इस्तेमाल के बारे में भी हमें जानकारी है, लेकिन ड्रोन का शुरुआती जो इस्तेमाल था वो बहुत सीमित था और इसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाइयों के लिए ही किया जाता था। तो ड्रोन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो चुका है, विस्तार ले चुका है और इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ती चली गई हैं। आज ड्रोन के माध्यम से लोग सामान पहुंचाना भी शुरू कर चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी चीज की कोई अंतिम सीमा नहीं है, उसमें हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास होता रहता है। इसी तरह विज्ञान में आज ड्रोन में लगातार बदलाव आते चले जा रहे हैं और अब ऐसे ड्रोन भी आने लगे हैं जो इंसान को लेकर उड़ सकते हैं। ड्रोन अलग अलग तरीके के देख चुके हैं और भविष्य में हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से हम जिस तरह से आज हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम ड्रोन के माध्यम से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और शायद ऐसा मुमकिन हो कि ड्रोन भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन जाए। कुछ भी हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। तो हमने आज ढेर सारी बातें कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली और अब चूंकि हमारे स्टूडियो का समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में आपने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सपना देखा है तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी चाहिए और पूरे लगन, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का था, प्रस्तुति प्रभु शरण की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: जहाँ रांची कार्यक्रम के साथ हम दोनों हाजिर हैं। हम दोनों यानी कि मैं विनीता और मेरे साथ हैं
1: रेणु।
0: आप सबको हमारा
1: जोहार
0: नमस्कार। और रेणु जी आपको भी हमारा जोहार और नमस्कार।
1: जोहार विनीता, जोहार।
0: कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं।
0: ना ना, ठीक तो नहीं होंगी इस गर्मी में क्योंकि बुरा हाल कर रखा है इस मौसम ने, है ना?
1: उतार चढ़ाव काफी हो रहा है, फिर भी
0: ठीक है,
1: औरों की अपेक्षा ठीक है।
0: ठीक है, हाँ हाँ। तो हमारी बातें शुरू हो और ढेरों जानकारियां हम अपने श्रोताओं से साझा करें, उससे पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ हाँ।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सबों का। मैं हूँ विनीता और मेरे साथ है आज रेनू। तो अब वक्त है सुविचार का, है ना रेनू जी?
7: हाँ जी।
6: तो कहते हैं ना, मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, है ना?
7: बिल्कुल सही कह रही है विनीता, क्योंकि कहते हैं ना कि ना पत्थर जब पानी में डूबता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।
6: सही में।
7: और ठीक वैसे ही जैसे घमंड खुद को ही बर्बाद कर देता है, इसलिए घमंड किसी बात का भी नहीं करना चाहिए और मन को सोच कर सुंदर रखना चाहिए।
6: बिल्कुल। और घमंड किस बात का? आज मेरा है तो कल सामने वाले का होगा, है ना? तो इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करें और मन पे कोई बोझ ही ना रखें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं या सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। बस मन को साफ रखें।
7: बस

0: तो विनीता, अब चलते हैं मौसम की ओर।
1: बिल्कुल, क्योंकि उसका हाल बताए बिना हम लोगों के प्रोग्राम बढ़ ही नहीं सकता है। तो
0: इन दिनों तो झारखंड में भाई भीषण गर्मी की चपेट में आ गया
1: आ
0: है।
1: चुका है, और हमें लग रहा था कि इस साल शायद थोड़ी राहत रहेगी, पर दो तीन दिनों से तो बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि कल झारखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, पर कुछ जगहों पे शायद हुई है, पर आज से तो फिर से वापस से वही मौसम है, है ना।
0: और इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है।
1: हाँ।
0: और वहीं रांची सहित कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार बताया जा रहा
1: है। हाँ हाँ, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी बताया कि 21 मई यानी कि आज से फिर से लू चलने की संभावना है, और यानी कि झारखंड भी भीषण गर्मी की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है।
0: ये झारखंड ही नहीं विहिता, ये बिहार और यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। और बुधवार को तो उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री तापमान था और सबसे गर्म स्थान रहा। और इधर शहरों में छिटपुट बारिश और बारिश हुई, हालांकि इस बारिश ने कुछ जिलों में उमस बढ़ा दी, हल्की बारिश होने से ना और दिक्कत हो जाती है।
1: तो कहने का मतलब यही कि जिस तरह से मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, हमें अपना ख्याल रखना है ना। और ख्याल कैसे रखना है ये तो हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को बताते हैं, लेकिन जैसा कि अभी का मौसम है यानी कि अचानक से कड़ी धूप और तुरंत बारिश, तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखें, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों का।
0: जब भी घर से निकले तो भाई अपने साथ क्या मोटे तौलिए, गमछी लपेट कर सिर में बांध के लपेटिए, या फिर छाता ले लीजिए,
1: और पानी की बोतल हमेशा साथ रखे।
0: पानी के साथ साथ सत्तू का घोल या छाछ, उस तरह का पेय पदार्थ हो उसको आप बोतल में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसे भी इस मौसम में काफी अच्छे फल मिलते हैं, तो आप उन सबको जरूर खाएं, डेली अपने रूटीन में जरूर शामिल करें, ताकि कुछ तो ठंडक मिल सके। तो इस मौसम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी पारा ऊपर जाने का संदेह है। तो आप ख्याल रखें अपना, क्योंकि अभी पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, तो आप खुद ही सोचिए कितनी गर्मी है। बाहर से आने के बाद तुरंत एसी में ना बैठे, पंखे के नीचे ना जाए, या पानी ठंडा ना पिए,
0: और या फिर एसी से निकलने के बाद भी
1: बिल्कुल तुरंत धूप में ना जाए। यही सब कारण है जो आपको बीमार कर सकता है।
0: सावधानी बरतते रहें और अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और फिर मनोरंजन के लिए गीत संगीत है ही।
1: बिल्कुल।

0: जो है रांची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के इतिहास की करते हैं। तो आपको बताएं कि आज ही के दिन यानी कि 21 मई को 1840 में न्यूजीलैंड को एक ब्रिटिश उपनिवेश घोषित किया गया था और 1851 में दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। वहीं 1881 में आज ही के दिन यूएस नेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
1: और आज ही के दिन 1881 ईस्वी में क्लास बार्डन ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और 1908 ईस्वी में आज ही के दिन पहली हॉरर फिल्म
0: शिकागो में दिखाया गया था।
1: अच्छा,
0: तो आप सोचिए 1908 में हॉरर फिल्म की शुरुआत हुई थी।
1: और 1904 ईस्वी में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई थी। और 1918 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने

0: महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी।
1: और 1970 में आज ही के दिन यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 1996 में आज ही के दिन पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन बनने की घोषणा की थी।
0: और 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था।

0: और जोहार रांची में उनकी बातें जिनका है आज जन्मदिन। तो आपको बताते हैं कि 21 मई 1931 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था
1: और 1960 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का भी जन्म हुआ था। तो चलिए इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े एक और गीत सुनते हैं।

0: और बातें हो रही आज के दिन की, तो हम ये भी बताएं आपको कि आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है।
1: वे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे जिनकी 21 मई 1991 को मद्रास के पास के गांव में हत्या कर दी गई थी। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थापना राजीव गांधी की याद में की थी और इसका उद्देश्य लोगों को समाज और राष्ट्र पर आतंकवाद और हिंसा के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित करना था।

0: और दिवस की बातें हो रही हैं रेणु जी, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएंगे कि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो
1: हाँ
0: कि हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यानी कि चाय लवर के लिए ये खास दिन
1: हाँ
0: है ना।
1: भाई,
0: तो
1: आज
0: और
1: दुनिया भर में जो है चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना और चाय उत्पादक किसानों की आजीविका और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है,
0: बिल्कुल,
1: इसका उद्देश्य तो
0: वैसे
1: यही है।
0: बिल्कुल, लेकिन मुझे तो लगता है इसके महत्व के बारे में हम ना भी बताएं तो लोगों को पता है, क्योंकि इसके बिना रहना तो बहुत मुश्किल है। और ये भी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी कि इसे आज ही के दिन यानी कि 21 मई को हम मनाएंगे।
1: और पानी के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय है, तो हर दुनिया भर में 2 अरब से अधिक कप चाय पी जाती है।
0: बिल्कुल। और ये दिन लाखों छोटे किसानों, श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां और उचित व्यापार के प्रति भी जागरूकता पैदा करता है।
1: ये तो सच है विनीता कि अगर घर में भी लोग आ जाते हैं ना, तो अगर चाय है वो नहीं पीते हैं, तो सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या

0: पिलाए क्या
1: सचमुच।
0: थे
1: और अगर कोई ये बोल दे कि मैं चाय नहीं पीता तो हमारा ही मन खराब हो जाता है ना,
0: विश्वास ही नहीं होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: है। लेकिन हाँ, चाय के आप दीवाने जरूर बने पर अपनी सेहत का ख्याल रखें,
0: रखते हुए
1: और हो सके तो थोड़ा सा चीनी कम डालें,
0: हाँ,
1: है ना, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है ना।
0: और हाँ, अब उसमें से कुल्हड़ वाली चाय में ना थोड़ा चीनी कम में चल जाता है
1: चल जाता है बिल्कुल। और आजकल चाय के इतने फ्लेवर आ गए हैं कि आप थोड़ा कम में भी पियेंगे तो अच्छा ही लगेगा, तो
0: चाय
1: ना
0: का जिस
1: लाइफ
0: सीओ
1: में
0: का
1: चीनी को कम होने दे ना चाय में, लेकिन हाँ सेहत का ख्याल
0: ख्याल
1: रखे।
0: रखिए।

0: लगता है गणेश की छुट्टी हो गई है
1: बिल्कुल हो गई है,
0: अपने दादी और नानी के यहाँ जाने को बेताब है।
1: बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, आप अब कुछ घूमने फिरने की बातें करने वाली हैं, है ना। हाँ, हाँ। तो क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई तो अब कुछ बातें पर्यटन की करनी चाहिए, है ना। और छुट्टियों का समय भी आ चुका है जैसा कि रेणु जी बता रही हैं, तो चलिए ना आज आपको ज्यादा दूर नहीं पास ही लिए चलते हैं। आपको बताए वैसे भी रेणु जी, हमारे झारखण्ड में जगहों की कमी नहीं है,
0: सच में
1: झारखंड में अगर घूमना चाहें तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं और कम खर्च में अच्छी जगह का आनंद ले सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पास ही में है गुमला जिला, यहाँ के पालकोट प्रखंड में है निर्झर रहस्यमयी जल स्रोत, जहाँ की कहा जाता है कि साल भर फ्रिज जैसा ठंडा पानी बहता है। और खास बात तो ये है कि ये पानी आता कहाँ से, यानी कि पानी का स्रोत अब तक रहस्य बना हुआ है।
0: बिल्कुल सही, वैसे भी गुमला जिला चारों ओर हरे भरे जंगल पहाड़ नदियों से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि मानो गुमला को प्रकृति ने बड़े फुर्सत से संवारा है। इस जिले में प्रकृति के साक्ष्य के रूप में कई ऐसे चीजें मौजूद है नवीनीता, जो अब तक रहस्य बनी हुई है। उसी में से एक है गुमला जिला के पालकोट प्रखंड स्थित ठंडे पानी का निर्झर। बातें और भी होंगी पर इस सांग के बाद।

0: तो हम बातें कर रहे हैं गुमला के निर्झर जल स्रोत की। तो कहते हैं ना रेणु जी कि शिव जी की कृपा यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि ऐसी कड़ाके की गर्मी में भी वहाँ फ्रिज के जैसा ठंडा पानी मिलता है। ये पालकोट पंपापुर में पहाड़ के नीचे स्थित है और इसकी खासियत ये है कि मौसम चाहे जैसा भी हो पानी कभी घटता बढ़ता नहीं है और हमेशा चाहे ठंड हो का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो ठंडा ही मिलेगा। और पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता है। तो यहाँ के
1: पानी रहस्य बना हुआ
0: बिल्कुल
1: है।
0: और पानी के बीच में ही अपरूपी शिवलिंग भी वहाँ पे है
1: जो कि पालकोट वासियों के लिए तो वरदान है। एक और खासियत यह है कि यहाँ जितनी अधिक गर्मी पड़ती है पानी उतना ही अधिक ठंडा होते जाता है। काफी दूर दूर से पर्यटक इस अद्भुत छटा को देखने के लिए आते हैं और वहाँ के लोगों का विश्वास है कि ये भोले बाबा की कृपा ही है। तो ज्यादा दूर नहीं है, एक बार होकर आइए इस रहस्यमयी जगह पर।

0: तो रेणु जी, बहुत सारी बातें हमने कर दी है ना। तो अब बातों बातों में ही अब जाने का वक्त भी आ रहा है, तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में उनके साथ रहिए और चुनिए जो आपके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों, यानी कि आपको उनसे खुशी मिले।
1: यानी कि खुशियों के साथ खुद के साथ कोई समझौता ना करें। इन बातों के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में बस इतना ही।
0: तो विनीता
1: और रेणु को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

के जवाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। तो चलिए आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवाते हैं। तो पहला सॉन्ग हमने लिया है हीनू से प्रवीण कुमार की, जिन्होंने सुनना चाहा है जलेबी फिल्म का गीत केके और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

और अगली फरमाइश आई है मोहाली से टीडी मल्होत्रा की और कालका हरियाणा से सुख चंदर बजाज और लोअर कुमारी की। इन्होंने सुनना चाहा है रामलीला फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

वेकअप सिद्ध, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। कविता सेठ की आवाज़ में, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने।

और अगली फरमाइश हमने लिया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतिक विरक और मीका विरक की। इन्होंने सुनना चाहा है सिंघम फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: सुबह की चाय और अपनों का साथ दिन बना देता है बेहद खास। हर घूंट में मिलती है नई ऊर्जा और मन में जगती है नई आस। और आज आपके दिन को फिर से खास बनाने आ गई है आपकी अपनी रेडियो सखी खुशबू, आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में,
1: और साथ में मैं जबीन। सखियों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। वैसे सखियों, आज का दिन है बड़ा खास। आज है 21 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि हर साल इसी दिन मनाया जाता है। वैसे सखियों, इस दिन को मनाने का मुख्य कारण चाय के महत्व को बढ़ावा देना और चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: वैसे सखियों, हम सभी चाय प्रेमियों को तो चाय पीने का बस एक बहाना चाहिए, फिर चाहे मौका कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। सखियों, हम में से ज्यादातर लोग सुबह की चाय को सुकून के साथ पीना पसंद करते हैं। ठंडी हवा चल रही हो बालकोनी में या छत में या कमरे में, आप कहीं भी बैठ कर मौसम का नजारा देखते हुए चाय की घूंट पीते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और सखियों, चाय के तो कई रूप हैं और बहुत प्रसिद्ध चाय भी होती है, जैसे कि कश्मीरी कहवा कह सकते हैं, जो कि एक कश्मीर की एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय हर्बल ग्रीन टी है, जिसमें मसाले होते हैं, केसर होते हैं, सूखे मेवे होते हैं। और ये सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि कश्मीरी संस्कृति में मेहमान नवाजी का प्रतीक है। यानी चाय है ना, वो मेहमान नवाजी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है ना।
1: और सखियों, चाय केवल एक पेय पदार्थ ही नहीं बल्कि इससे लोगों की भावनाएं और रिश्ते भी जुड़े हुए होते हैं। भारत में शायद ही कोई घर ऐसा हो है जहां दिन की शुरुआत चाय के बिना होती हो, क्योंकि चाय हमें बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। चाय थकान मिटाती है, ताजगी देती है और लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाती है, और ये भी काम करती है खुशियाँ बांटने का, अगर हम कह सके तो इसे। इसी कारण यह कहा भी जा सकता है कि चाय तेरे कितने रूप।
0: बिल्कुल, चाय के तो अनगिनत रूप भी है महजबी, जिसमें अलग रंग होता है, अलग स्वाद होता है, अलग संस्कृति होती है, और झारखंड में इसकी अलग झलक भी देखने को मिलती है। वैसे अब सुबह की ताजगी वाली जो चाय होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह की एक प्याली चाय पूरे दिन को ऊर्जा से भर देती है। आपको अक्सर घरों में, गली में, मोहल्लों में या नुक्कड़ पर लोग सुबह की अखबार पढ़ते हुए या परिवार के साथ बैठकर चाय का आनंद लेते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह की चाय से ही दिन की अच्छी शुरुआत होती है।
1: वैसे ही जैसे कि दोस्ती, हम कहें कि दोस्ती के बीच में या फिर बातचीत वाली चाय, जहां दोस्तों की महफिल हो या फिर परिवार की बैठक, चाय हर घर के में मिलती है देखने के लिए। यानी कि अगर हम कहें कि चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती है, कई रिश्ते तो चाय की प्याली के साथ मजबूत भी होते हैं। लोग घंटों बैठकर चाय के साथ अपना दुख सुख भी बांटते हैं यार खुशबू, और ये भी हम कह सकते हैं कि चाय दुख खुशियाँ और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक जरिया है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमानों का स्वागत अक्सर चाय के साथ ही किया जाता है। घर आए मेहमानों को चाय पिलाना सम्मान और अपमान दिखाता है, क्योंकि चाय लोगों के बीच प्रेम और ये जो होता है ना, अपार श्रद्धा का प्रतीक होता है। वहीं सखियों, चाय कई स्वादों वाली भी होती है, जैसे अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, मसाला चाय, गुड़ चाय, ग्रीन टी, लेमन टी और ना जाने क्या क्या टी। वहीं सखियों, सर्दियों में

0: कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद तो सभी ने लिया है ना?
1: हाँ, और खुशबू ये जो कुल्हड़ वाली चाय होती है ना, इसका तो आनंद क्या कहने, मतलब हम जबान से कह ही नहीं पाते हैं, अल्फाज ही नहीं है। और वही काम करने वाले लोगों के लिए चाय ऊर्जा का काम करती है, यानी को स्रोत माना जाता है। तो विद्यार्थियों और कर्मचारियों के, मजदूरों के लिए चाय ताजगी का स्रोत भी होती है।
0: बिल्कुल। और महजबीन, हम चाय की बात कर रहे हैं और असम की चाय की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की सबसे प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे बेहतरीन काली चाय वहीं मिलती है, जो अपने गहरे रंग, मजबूत स्वाद और खुशबू के लिए मानी जाती है। तो कभी खुशी में चाय, कभी दुख में चाय, तो बारिश के मौसम में पकौड़ों के साथ चाय, हर अवसर पर चाय लोगों की साथी बन जाती है। और ये केवल स्वाद का नहीं बल्कि भावनाओं का भी रिश्ता है। महजबीन, हमने बातें तो बहुत की, अब चाय का एक और स्वरूप हम इस गाने से सुनते हैं, है ना?
1: हाँ।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहनों, फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आगे खुशबू हमें जानकारी देंगे कि आगे प्रोग्राम में क्या है।
7: सखियों, अभी हम आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता और विषय है उच्च रक्तचाप लक्षण, कारण और उपचार। और इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि झारखंड राज्य कार्यक्रम में एक पदाधिकारी के पद पे हैं। और उनसे बातें हो रही हैं महजबीन की, क्योंकि आज उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर एक विशेष जानकारी।
8: बहनों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम हमेशा आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी बातों की जानकारी देते हैं। आज भी हम उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी देंगे। मिली आज के मेहमान से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर।
9: नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह।
8: सर, उच्च रक्तचाप आखिर है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी दें डिटेल से।
9: उच्च रक्तचाप में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दो होते हैं, जिसमें ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला डायस्टोलिक कहलाता है। और सामान्य रेंज इसका है 139 to 100, और नीचे वाला रहता है आपका 90 to 70। ये सामान्य है, लेकिन 120/80 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक यदि रहता है तो हम इसे सामान्य रक्तचाप कहते हैं। यदि इससे बढ़ा हुआ आता है 140 के ऊपर तो हम उसे उच्च रक्तचाप कहेंगे। इसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एक होता है इम्पेयर्ड, दूसरा होता है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यदि 140 के प्लस रहे तो माइल्ड में आएगा, 150 से ऊपर रहे तो मॉडरेट में आएगा, और 160 के ऊपर चला जाए तो सीवियर माना जा सकता है।
8: और सर, ये हाइपरटेंशन के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें।
9: ये मुख्य दो तरह से हैं, एक इसेंशियल कहा जाता है आइडियोपैथिक, जिसमें कारण पता नहीं चलता, और एक होता है जिसमें आपको कारण पता चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से किडनी से संबंधित बीमारियां होने पर रक्तचाप ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडोस्पाइनल डिजीज हैं और हर डिजीज में भी आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ आता है।
8: और सर, ये भी बताएं कि मुख्य कारण ने आपको बता दिया कि शुरुआती जो लक्षण होते हैं, बहुत में बहुत लक्षण नहीं आते हैं, और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें लक्षण दिखते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे सर दर्द होना, चक्कर आना, ये सारे दिखते हैं, और कुछ लोगों में तो ये लक्षण दिखते भी नहीं है। तो शुरुआती लक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
9: शुरुआती लक्षण में मैडम चक्कर आना एक तो हो गया, और सर दर्द रहना, विशेष करके सिर के सामने वाले हिस्सों में दर्द रहता है। यदि इसका कोई अन्य कारण नहीं है तो आज का जो लाइफ स्टाइल है उसके अनुरूप ये ब्लड प्रेशर इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। और जब भी सर दर्द हो तो सामान्य न मानते हुए चिकित्सक के पास जाकर के अपने रक्तचाप की जांच करवाएं, और यदि हो सके तो पूर्णतया निदान कराने हेतु डॉक्टर की सलाह लें और वो समयानुसार जो भी कारण होगा आपके साथ सर दर्द का उसका निदान करेंगे। लेकिन रक्तचाप टूल आउट कर लिया जाना अत्यंत जरूरी है।
8: तो सर ये जो रक्तचाप होते हैं तो क्या ये जेनेटिक होते हैं या फिर ये बीमारी के रूप में हम इसे किस तरह से देख सकते हैं? ऐसे आप किस तरह बताएंगे कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई है वो कारण भी है या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, इसे आप किस तरह से समझाएंगे?
9: हेरिडिटी भी कारण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आज के समय में है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में जो आज की जीवन पद्धति हो गई है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक महत्वपूर्ण कारक है रक्तचाप के लिए। और आज के समय में जो भी व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड है तो उसे प्रायः टेंशन तो रहता ही है, चिंता रहती ही है। लोगों का अपना खान पान का व्यवहार भी काफी बदल गया, लोग डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ तले हुए चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण से यदि लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा गया तो वो भी मदद करता है आपके रक्तचाप को बढ़ने में। फिजिकल एक्टिविटी हम लोग काफी कम करते हैं, पैदल चलना या व्यायाम करना जो कम से कम सप्ताह में 5 दिन जरूर होना चाहिए, जो आधा घंटा से ऊपर की अवधि का हो, तो ये भी हम लोग नहीं कर पाते। हमारा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल काफी हद तक जिम्मेवार है उच्च रक्तचाप को बढ़ाने में। और बच्चों में ज्यादातर यदि रक्तचाप होता है तो उसका मुख्य कारण जो है किडनी से संबंधित बीमारियां होती है। बच्चों में एक जो होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसके कारण से बच्चों में बहुत ज्यादा रक्तचाप की बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह जो बीमारियां किडनी से संबंधित, इसके कारण बच्चों में बीमारियां होती है ज्यादा रक्तचाप की। लेकिन बड़ों में लाइफ स्टाइल के अलावा और अन्य कारण हैं जिसके कारण से कि रक्तचाप की बीमारी हो जा सकती है। जैसे कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हुआ, इसके कारण भी होता है, किडनी डिजीज का अपना असर है ही, हृदय से संबंधित बीमारी होती है उसमें भी रक्तचाप बढ़ सकता है।
8: सर इससे बीमारी से बचने के लिए हम कौन कौन सी खास बातों का ख्याल रखें ताकि इस बीमारी से हम दूर रह सके?
9: इसके लिए तो सबसे जरूरी है कि पहले जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसको टैकल करने का, अपने दिमाग को विश्राम देने का एक तरीका ढूंढिए, जो सामान्यतः आपका प्राणायाम या योगासन वगैरह हो सकता है। दूसरा, नमक जो खाते हैं उसमें नमक की मात्रा सीमित रखें, सलाद का सेवन ज्यादा करें, ऊपर से नमक न लें। और आजकल के जो डिब्बा बंद पदार्थ या जो भी आप पैकेज फूड का इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम कंटेंट पे ध्यान दें जरूर, क्योंकि जो भी मार्केट में या स्ट्रीट फूड्स हैं या जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं उसमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये सोडियम जो है आपके रक्तचाप को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, आप एक्सरसाइज करेंगे, सर्कुलेशन भी सही रहेगा आपका और रक्तचाप भी काफी हद तक नियंत्रित रहेगा। मानसिक दबाव को, मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। यदि जरूरी हो तो किसी भी साइको एनालिस्ट की सलाह आप इसके लिए ले सकते हैं। और यदि आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो हमेशा किसी योग चिकित्सक या अस्पताल में जाकर के अपनी जांच करवाएं और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सलाह का पूर्णतः पालन करें।
8: हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी है तो महिलाओं से संबंधित ये बताएं कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का होना किस तरह से आप देखते हैं?
9: उच्च रक्तचाप जो गर्भावस्था के दौरान होती है, एक हो सकता है कि वो एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब गर्भावस्था के पहले से ही आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, और एक कहलाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसको प्री इक्लेम्सिया और बाद में इक्लेम्सिया, जब कन्वल्सन हो जाता है तो इक्लेम्सिया के तौर पर जाना जाता है। ये काफी गंभीर स्थिति है, इसको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानते हैं और इसमें माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है।
8: और ये भी जानकारी दे सर कि हृदय गति और रक्तचाप के बीच क्या संबंध है, इसे किस तरह से देखते हैं?
9: हृदय गति और रक्तचाप में संबंध है कि जब रक्तचाप ज्यादा रहता है तो कभी कभी जो है आपका हृदय की गति भी बढ़ी हुई रहती है, और ऐसा सामान्यतः जो मानसिक दबाव में ज्यादा रहते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। इसके अलावा यदि किडनी संबंधित कुछ बीमारियां हैं पैरिनल ग्लैंड से संबंधित जब बीमारियां हैं तो उसमें टैकीकार्डिया के साथ साथ रक्तचापी समस्या हो सकती है।
8: और सर खान पान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर अप और डाउन होता है, तो इसे आप कैसे समझाएंगे ताकि लोग स्वस्थ रहें?
9: यदि आपका रक्तचाप 110 सिस्टोलिक 110 से नीचे यदि है तो आप ORS का सेवन करें, नारियल पानी ले सकते हैं। दूसरा, मौसम के अनुरूप ऐसे चीज ज्यादा खाएं जिसमें जलीय अंश ज्यादा हो, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी वगैरह, नारियल पानी, ये सब ले सकते हैं। खाने में सलाद यदि संभव हो तो बिना नमक का लेना ये करें। साग हरी सब्जियां वगैरह का सेवन ज्यादा करें और ज्यादा वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे अंडे का पीला अंश, मांस वगैरह का सेवन कम से कम करें। बाजार में बिकने वाले डिब्बाबंद खाद्य पेय पदार्थों या खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें, और यदि किसी का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उसके सोडियम कंटेंट पर जरूर ध्यान दें।
8: और इसको चलते चलते ये भी बता दें कि रक्तचाप जो सही मापने का तरीका है उन पर किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सही मेजरमेंट आए।
9: रक्तचाप जब भी लें तो कम से कम 10 मिनट जो है मेंटल रेस्ट में रहने के बाद ही लें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपके पास आया कि मुझे रक्तचाप नापवाना है तो आप उसका तुरंत रक्तचाप मापना शुरू कर देंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगा। और कम से कम 3 बार रीडिंग लें और तीनों का एक एवरेज निकाल करके तब उस पर आप अपनी ओपिनियन देखें, हाँ आपका रक्तचाप ये हो सकता है। सिंगल रीडिंग पे कभी भरोसा न करें, वो मिसलीडिंग हो सकता है। और कोशिश करें कि दोनों हाथ में लें और रक्तचाप लेने के पहले कम से कम जो नाड़ी है आपके दोनों कलाइयों में या जांघ के बगल में जो होता है, यदि पुरुष है चाहे कोई भी, यदि उन्हें आपत्ति नहीं हो तो, या पैर के एड़ी के बगल में जो नस होते हैं वहां पर जरूर एक बार फील कर लीजिए कि पल्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसमें कोई विसंगतियां इरेगुलरिटी तो नहीं है। जब चारों जगह पर नस ये फील हो जाए तो आराम से ली कम से कम 10 मिनट आराम करने के बाद तब उसका रक्तचाप लें और 3 रीडिंग कम से कम अवश्य लें।
8: पहले अभी हम जानकारी दे रहे थे कि उच्च रक्तचाप क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
7: सखियों अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता और विषय था उच्च रक्तचाप लक्षण कारण और उपचार, और आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह और उनसे बातें हो रही थी महजबीन की। महजबीन बातें तो हम बहुत सारी करेंगे और अब सखियों को एक प्यारी सी जानकारी भी देंगे, हरियाली बचाएं जीवन बचाएं, क्योंकि पेड़ पौधे और हरियाली प्रकृति का अमूल्य उपहार है। हरियाली केवल धरती की सुरक्षा नहीं करती बल्कि मानव जीवन को भी सुरक्षित और स्वस्थ बनाती है।
6: और अगर हम सुंदरता की बात करें कि ये सुंदरता तो बढ़ाती ही है और इसके साथ साथ सुरक्षित का भी, जैसे तुमने कहा कि ये भी सुरक्षित हम लोगों को प्रदान करती है। आज बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण, ये चीज़ है कि जो कारण है कि हरियाली तेज़ी से कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं हम इसके ज़िम्मेदार हैं खुशबू, क्योंकि हमने जिस तरह से पेड़ों का काटना जारी रखा है, जिस तरह से प्रदूषण को हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम जहाँ तक हो सकते इसकी इसको कटौती कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी है, हमें आगे जाना है, आगे कुछ करना है, बस इस वजह से हम कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहे हैं
7: यदि प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, और यदि हम समय रहते हुए जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हरियाली बचाए जीवन बचाए आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि अगर मैं जमीन सोचूं, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होगा तो मानव जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए है ना जीवनदायिनी है, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ हमें जीवन देते हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वहीं पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक है, ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं।
6: तो बहनों ये थी जानकारी कि हम किस तरह से हरियाली को बचा सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
7: बिल्कुल, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा में भी हमारी सुरक्षा में वो थोड़े से गंभीर संकट आ रहा है, इसलिए हमें हरियाली बचाना चाहिए। बातें तो बहुत सारी है मैजबीन, लेकिन अब हम घड़ी की सुई हमें बोल रही है कि अब हमें जाना होगा। तो जाते जाते अपनी सखियों को बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और अब अपनी दो सखियों खुशबू
6: और महजबीन को दे इजाजत।
7: नमस्कार।
0: गृहलक्ष्मी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल,

0: काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुन्नार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी,
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है।

कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ।

0: एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
0: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी

0: एक मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर।
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों

0: आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
1: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
2: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, एक बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ

0: कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations.

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार।

0: समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आंगनबाड़ी भवन निर्माण, 100% टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। और रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज लाल आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। रांची पुलिस मुख्यालय में आज एक साथ रिकॉर्ड 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 25 प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले 8 शीर्ष नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ 426 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उग्रवादियों ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष 5 इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी सौंपे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये भटके युवा मुख्य धारा में लौटे हैं।
1: आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत दिया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे।
0: कृषि विभाग रांची की ओर से नगड़ी प्रखंड में जिला स्तरीय किसान मेला सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और सरकारी अनुदान योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि एवं उद्योग विभाग के सभापति आदिल अजीम ने शिरकत की। रांची में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल और अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। रांची में जिला जज एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए। सीबीआई की धनबाद टीम ने सीजीएसटी के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है।
2: जीएसटी के 2 पदाधिकारी मिल करके जांच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। इस सीबीआई के नंबर पर हम भी बात किए, उसके बाद रिपोर्ट को लिखवाए, उसके बाद जो भी हुआ, रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए, जो आज पकड़ा गया है।
0: झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने उम्मीदवारों की मांग और विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी जेटेट के लिए आगामी 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 30 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोलने का फैसला शामिल है। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES 56 कोर्स के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं कक्षा और JEE मेंस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर की जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 15 मई को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा।
1: तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है, 5 जिंदा गोलियां हैं, 1 खोखा, 3 खाली मैगजीन, जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उस घटना में उसको भी बरामद कर लिया गया है और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 136 अंक बढ़कर 75,454 पर और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 23,731 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोडरमा जिला इन दिनों भीषण लू और तपिश की चपेट में है। जिले में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी के कारण स्थानीय नदी और जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कांत पांडे ने श्रोताओं से अपील की है कि वे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें।
2: कि अगर जरूरी ना हो तो आप भारी धूप में ना जाएं। यदि आपको किसी कारण से निकलना ही होता है तो सारा प्रोटेक्शन ले, जैसे कि कोई गमछा बांध के रखे, हो सके तो जो ढके हुए वाहन है उनका प्रयोग, बाइक और टू व्हीलर हो सके तो अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, बार बार पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट साथ में रखें, अपने यूरिन के कलर को वॉच करते रहें।
0: राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, 100% टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी, उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का

खेल महाकुंभ 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना खमाज में ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पॉप सॉन्ग फाल्गुनी पाठक से।

0: ये आकाशवाणी है, जमीन से खबरें सुनिए।
1: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली इक्तिसादी राब्तों को वसअत देने के लिए भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हुकूमत ने सारफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुँच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे

0: पार्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan, with its long time,
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
5: India has recently launched...
6: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
6: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: की सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और आइए जय भारती कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ए आर रहमान की आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ।

सुनते हैं वेक अप सेठ फिल्म का गीत कविता सेठ की आवाज़ में। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में सनी फिल्म का गीत। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है

0: ही सरकार के साथ जुड़े कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर नामकुम स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं सुप्रियो भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल रहा है। झारखंड राज्य
2: उनका योगदान अमिट है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अरविंद कुजूर ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देश पर झारखंड एथलेटिक्स संघ और खेल विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई से 25 मई 2026 तक रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो तथा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। कुछ ही देर में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप अंताक्षरी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दम्भ का स्तंभ खंधम दम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से विन न

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खत न होने दे किसी के चेहरे की मुस्कुराहट, बड़ी मुश्किल से आती है ये कुदरती आहट। तो चलिए इन प्यारी बातों के साथ नॉनस्टॉप अंताक्षरी का ये सफ़र शुरू करते हैं, जहां आप सुनेंगे बैक टू बैक बहुत सारे हिट सॉन्ग। आप हैं अपनी दोस्त विनीता के साथ, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

सुन रहे हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी आकाशवाणी के रांची केंद्र से और आप हैं अपनी दोस्त विनीता के साथ। तो अब नेक्स्ट सॉन्ग बहुत ही प्यारा सा।

साथ नॉनस्टॉप अंताक्षरी का ये सफर आज बस यहीं तक। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे कुछ ही पलों में प्रोग्राम रांची मेलोडीज के साथ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज। मैं हूं आपकी दोस्त विनीता। कहते हैं कुछ बातें, कुछ लोग और उनसे बने रिश्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो चलिए आज हम भी उन लम्हों की बातें करते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, बल्कि कुछ यादें तो ऐसी होती है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं बल्कि और गहरी होती जाती है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ।

तेरे ख्यालों की मेरे वजूद को भिगो जाती है, एक बूंद तेरी याद की मुझे इश्क के दरिया में डुबो जाती है। तू है या नहीं पता नहीं, पर तेरे होने की खुशबू मुझे कुछ खास बना जाती है।

से तेरा ख्याल ना जाए तो मैं क्या करूँ, तू ही बता तू याद बहुत आए तो मैं क्या करूँ। हसरत है तुझे एक नज़र देख लूँ मगर किस्मत वो लम्हा ही ना लाए तो मैं क्या करूँ।

सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज। अब एक और प्यारा सा गीत। तुम्हारा हाथ थाम कर यूं ही बैठ जाने का दिल करता है, तुम्हारी बातों में तुम्हारी यादों में खो जाने को दिल करता है। मिलता है इतना सुकून तुम्हारे करीब आकर कि बस तुम्हारे पास आकर जिंदगी बिताने को दिल करता है।

लफ्जों में बयां हो जाए, इश्क तो वो है जो आंखों से समझ आए, है ना। तो चलिए इन बातों के साथ ये खूबसूरत सा सफर आज बस यहीं तक। तो विनीता को दे इजाजत इस प्रोग्राम से, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस ने जिला कमेटी के नेतृत्व में साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। चतरा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 550 किसानों को बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक फसल अपनाने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि ऊपरी भूमि पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती लाभकारी साबित हो सकती है। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा जमशेदपुर मार्ग पर कुज्जू पुल के पास हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका थाना क्षेत्र के रोलाडी गांव निवासी 30 वर्षीय सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और उससे अधिक पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत, प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
2: आजकल लोग ओवरटेकिंग करके दिखावा करने के लिए कई बार काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और कई सारे लोग इसी तेज गति के कारण, ओवरटेकिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए जब भी सड़क पर गाड़ी लेके निकले तो उन गाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और सड़क पर चलने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति

0: भी काफी खतरनाक साबित होता है। ओवरटेकिंग यानी आगे चल रहे वाहन को पार करना, ये तभी सुरक्षित माना जाता है जब सही नियमों का पालन किया जाए। लेकिन आजकल कई लोग बिना संकेत दिए गलत दिशा में या तो गाड़ी मोड़ देते हैं या फिर ओवरटेक करने के लिए काफी जल्दबाजी कर बैठते हैं। गलत ओवरटेकिंग के कारण सामने से आने वाले वाहन से टक्कर हो सकती है। कई बार बाइक सवार या पैदल यात्री भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। खासकर हाईवे पर तेज गति और लापरवाही से ओवरटेक करना बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर हम बात करें बीते कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की, तो ओवरटेकिंग और तेज गति सबसे पहले जो समस्या है वो निकल कर आती है कि लोग जल्दबाजी में कहीं पहुंचने के लिए काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा कई बार लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग के समय और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी का उपयोग करते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं आजकल खास करके युवा वर्ग में काफी देखी जा रही है, और स्टंट करना, रेसिंग करना, ये सारी चीजें जो है आजकल के युवाओं में खासकर ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए अगर इस तरीके की चीजों से बचना है तो ओवरटेकिंग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेज गति से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो घर से जल्दी निकले तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी इस संयमपूर्ण गाड़ी चलाने के तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे। तो ये हमने बात कर ली कि ओवरटेकिंग और तेज गति से वाहन चलाने से क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। अब बारी भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो है हीट वेव और लू से बचाव के तरीके और इसके क्या उपचार हैं इसके बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक, ऑर्किड मेडिकल में कार्यरत हैं। और सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: जैसा कि अभी वैसे तो इस बार गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है झारखंड में और पूरे देश भर में गर्मी का जो असर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम मौसम के अनुसार रहते हैं, मौसम के अनुसार खाते पीते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी सारी चीजों को करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति काम करता है, बाहर निकलता है और अपने सभी कामों को करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना जरूरी होता है, तो इस कंडीशन में किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले बताएं।
1: देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हीट वेव क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है और लू लगना क्या है
0: जी।
1: तो ये बात समझने के लिए समझना चाहिए कि आदमी के शरीर जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो ब्रेन से होता है, हाइपोथैलेमिक सेंटर होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, क्योंकि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी पैदा होती है तो हीट पैदा होती है, तो हीट जो है उसको जो है डाइल्यूट करता है। कैसे करता है, आप देखते हैं पसीना निकलता है, यूरिन पास होता है, तो ये सब चीजें जो है बॉडी मैकेनिज्म है उसको ठंडा करने का। तो अगर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करता रहता है तो नॉर्मल रहता है चीजें जो है, लेकिन जब कोई बीमारी होती है, जब कुछ होता है जैसे बुखार आता है तो भी वो थर्मो रेगुलेटरी पूरा काम करता है, लेकिन उससे भी जब ज्यादा होता है तो बुखार होता है तो आप दवा देते हैं, आप उसका रीजन समझते हैं। अब ये जो हीट स्ट्रोक हीट वेव है ये तभी होता है जबकि बहुत ज्यादा देर आदमी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह जाए, पानी उसके शरीर के अंदर न हो, पानी नहीं पिया हो, भूखा हो, खाना भी नहीं खाया हो, तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो वो हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें जब टेम्परेचर 45 डिग्री, मतलब जो आप समझिए कि जब आपको 105 डिग्री फारेनहाइट हो जाए बॉडी का टेम्परेचर, तो आप समझिए कि आप हीट वेव में चले गए हैं
0: जी।
1: तो उस समय बॉडी जो है रेगुलेट करना बंद कर देती है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम एक तरह से काम नहीं करता है। तो अब क्या करना है आपको ये सोचना है उस समय
0: जी।
1: तो लू से बचना तो एक छोटा छोटा धीरे धीरे का स्टेप होता है, वो स्टेप काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे तुरंत हीट स्ट्रोक नहीं होता है, जैसे पहले हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन से पहले भी क्रैम्प्स होता है, आदमी को थोड़ा सा चक्कर आता है, आदमी को वोमिटिंग लगती है, आदमी को फील होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई एक मिनट में हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है
0: जी, जी, जी।
1: फिर हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन होता है कि आदमी एकदम काम करने का मन नहीं करता है, चक्कर आने लगता है, बैठ जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है कि उसकी मजबूरी कि उसी धूप में काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये स्टेज होती है
0: जी।
1: जिस स्टेज पर आप उसको रोक लीजिए। आप रोकने का क्या तरीका है कि आप ठंडे में रहिए, हवा है, आप खूब पानी लीजिए, पानी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए, क्योंकि सोडियम का ही ज्यादातर जो है डिप्लीशन होता है। तो अगर आपने उसको अपना ही उपचार शुरुआत से कर लिया, हीट स्ट्रोक होने से पहले कर लिया, तो बचाव भी संभव है। तो ये होता आदमी के गलती से ही है।

0: मजबूर है, जैसे मजदूर है
1: जी,
0: या बच्चा है जो नहीं जानता है कि भाई हम धूप में खेल रहे हैं, हमको ऐसा हो सकता है, आदमी है काम कर रहा है, उसने सोचा है अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, आधा घंटा और काम कर लो, एक घंटा और काम कर लो, उसका मालिक खड़ा हुआ है, ठेकेदार खड़ा हुआ है, नहीं तुम एक घंटा और काम करके आओ, तो वो लू लग सकता है। तो लू लगना मतलब हीट स्ट्रोक में चले जाना। तो बचाव के लिए आपको बता दिया कि हर स्टेप में कैसे करना है। और जहां तक रहन सहन की बात है, गर्मी का मौसम आ गया, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग हैं, तो ये समझना चाहिए कि जितने गाढ़े कपड़े हैं, गाढ़े कलर के और स्पेशली काले कलर के कपड़े हैं, वो सब हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं
1: जी।
0: वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप ऐसे देखे होंगे कि शेख लोग जो है जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं, यहाँ तो रांची का टेम्परेचर 30, 35, 40 रहता है या 45 पहुंच जाएगा, वो तो हमेशा ही 55 में रहते हैं, तो आप देखते हैं ना कि एकदम सफेद सफेद कपड़े पहने रहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो हीट को अंदर नहीं आने देता है। तो उस तरह के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ये नायलॉन, सिंथेटिक, टेरेलिन, टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, और बहुत टाइट कपड़े भी गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। ये बचाव के हैं। घर से निकलें, खाना खा लें, पानी पी लें, भरपूर पानी पिए, बीच में कभी भी प्यास लगता है तो रुक के पानी पिए।
1: यानी कि खाने पीने और जो बॉडी को ठंडा रखने का काम है वो जरूरी है गर्मी में,
0: वो जरूरी है। आप मतलब अगर बचाव चाहते हैं, हर चीज में क्या है, बचाव पहले
1: जानकारी होनी चाहिए।
0: हाँ, जानकारी होनी चाहिए, फिर सबको लागू होना चाहिए।
1: तो अगर हम लोग कहें कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है बाहर काम करना, तो वैसे लोगों को खाने पीने की जो चीजें हैं गर्मी के समय में, किन किन चीजों को खान पान में लेना चाहिए?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया, कभी भी गर्मी में खाली पेट जो है आदमी को काम नहीं करना चाहिए। जितना खाली पेट होगा उतना एग्जॉशन होगा, उतना थकेगा। अगर आदमी थोड़ा खाना, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, हमेशा आदमी को गर्मी में थोड़ा कम खाना चाहिए, और खाना हल्का खाना, और जैसे आप फल समझिए, जैसे खीरा, ककड़ी, सस्ते फल भी आते हैं जिसके अंदर की वाटर बहुत होता है, वाटर कंटेंट बहुत होता है, तरबूज है, खरबूज है, इस तरह के फल अगर लें, दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, ये सब चीजें लिक्विड चीजें ताकत भी देती हैं और रिहाइड्रेट भी करती हैं, अब बहुत देर तक करती हैं। सत्तू है, जैसे सत्तू घोल करके आदमी पीता रहे, थर्मस में रख ले, बॉटल में रख ले, क्योंकि खराब भी 2-4 घंटे नहीं होता है। तो ये जो हल्के हल्की खाना है, दही है, सत्तू है, ये सब जो है ना न्यूट्रिशन भी देता है, ताकत भी देता है, रिहाइड्रेट भी करता है, और लू लगने का कोई खतरा भी नहीं होता।
1: अभी गर्मी के समय में छोटे जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन लोगों के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए गर्मी में इनको?
0: जो सावधानी बड़े लोगों का है, करीब करीब वही सावधानी बच्चों का है। बच्चे जल्दी मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि हम धूप में इतना देर खेल रहे हैं, हमको प्यास लगी है, उनका तो खेलने का है। तो मदर फादर को ही मतलब ध्यान देना होगा कि बच्चा समय से पानी पिए, अच्छे से पानी पिए, पानी पीने का मन नहीं करता तो शरबत पिए, शरबत पीने का मन नहीं करता तो लस्सी पिए, जूस पिए, फ्रूट जूस पिए, लिक्विड किसी भी फॉर्म में, अगर लिक्विड किसी भी फॉर्म में बच्चा जो है 1 से 1.5 लीटर जो है अगर पी लेता है तो मतलब हाइड्रेशन उसका अच्छा रहेगा, तो उसे कहीं भी खेलेगा कूदेगा कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को बांध के कोई नहीं रख सकता कि नहीं तुम एसी में ही रहो, पंखा में रहो, तुम जरा भी नहीं खेलने जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए गर्मी में कैसे रहना उनको जरूरी है?
0: कोई नहीं, उनका वही है कि एक थोड़ा लिमिटेशन वर्क का हो ही जाता है, मतलब 6 मंथ से ज्यादा या 3 मंथ हो या 9 मंथ हो, तो लिमिटेशन तो वैसे ही उनका कम हो जाता है, बाकी खाते पीते ही रहें, वही एक बचाव है, कोई इसमें दवाई तो लेनी नहीं है, दवाई ले दे करके वही है कि खाना पीना, ढंग का खाना पीना रहेगा, स्वस्थ खाना रहेगा, बाजार की चीजें नहीं रहेंगी, बाजार की चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, गर्मी के दिनों में किसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए, तो अलग चीज हो गई, हीट स्ट्रोक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि पता चल वोमिटिंग भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, और साथ में धूप में काम भी करना पड़ रहा है, धूप में जाना भी पड़ रहा है।
1: यानी कि खान पान से लेकर के आप जो कपड़े पहनते हैं उन सभी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या नशा का सेवन करते हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या उन्हें गर्मी के समय में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
0: देखिए, ऐसा कोई एक्लिमेटाइजेशन एक चीज होती है, एक्लिमेटाइजेशन जैसे कुछ लोग हैं बहुत जल्दी एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, जैसे जिनकी आदत होती है बार बार एसी में रहना, बाहर निकलना, बाहर निकल करके फिर अंदर आना, तो अपने को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, उनको आदत सी पड़ जाती है। लेकिन जो कोई पहली बार ऐसा हुआ हो कि मतलब जो है अचानक एसी में रहा हो और फिर धूप में चला जाए,

0: उसको हो सकता है कि एक्लेमेटाइजेशन तुरंत नहीं हो, तो उसकी उस वजह से उसको तुरंत धूप लग जाए, तुरंत प्रॉब्लम हो जाए। हार्ट के लोगों को क्या है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, डरे भी बहुत रहते हैं, तो उनको सेफ्टी तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अब इसमें ये तो है नहीं कि बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा खाना खाना, ऐसा कुछ नहीं है।
1: सेफ्टी में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: वही सेफ्टी में उनको वही है कि ओवर एग्जर्शन नहीं हो, कभी भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिन में इनफैक्ट किसी को भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। ओवर एग्जर्शन करने से अगर साथ में कोई भी एसोसिएटेड फैक्टर होगा तो उसको बढ़ने के चांस हो जाते हैं।
1: जी
0: इसलिए अवॉइड करना चाहिए, ओवर एग्जर्शन नहीं करें, रिलैक्स होकर के वही खाना पीना जो है, हमेशा रिहाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है, पानी जूस मट्ठा जैसे हमने बताया कि लिक्विड जितनी चीजें
1: लिक्विड
0: हैं,
1: फॉर्म्स।
0: जरूरी नहीं कि केवल पानी ही ले। अगर ये है कि लिक्विड फॉर्म में जो है लेता रहेगा तो सफिशियंट जो है 3 to 4 liters अगर जो है गर्मी के दिनों में दिन भर में आदमी ले लेता है ये सफिशियंट।
1: सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गर्मी में हम इस बात को भूल जाते हैं कि कब पानी पीना है, कब खाना है, और काम की धुन में अक्सर ऐसा लोग करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार की तरफ से भी इस पर काफ़ी नियंत्रण के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन आप और हम जब भी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के सभी उपायों को करके निकलें, ताकि गर्मी से थोड़ी राहत तो ज़रूर मिल जाए। अगर आप सावधान रहते हैं तो आप लू लगने से और हीट वेव के खतरे से बच सकते हैं, और खान पान से लेकर के हर व्यवस्था अगर आप बाहर निकल रहे
0: फिर
1: हैं तो।
0: दूसरा, ये जो अभी सबके मन में भ्रम है कि इलेक्ट्रॉल
1: जी
0: इलेक्ट्रॉल खरीद लें पी लें,
1: हाँ
0: इलेक्ट्रॉल
1: हाँ
0: खरीद लें पी लें, नहीं, वो भी बहुत ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। बच्चे को तो ज्यादा ही नुकसान हो सकता है, बड़े भी अगर उसको लेंगे बिना वजह बेवजह, ना डायरिया भी नहीं है, वोमिटिंग भी नहीं है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉल पिए जा रहे हैं तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा देसी इलाज है कि शिकंजी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए टेस्ट वाला, आप इलेक्ट्रॉल के लिए क्यों भागे जा रहे हैं।
1: तो आज इतना कीमती समय निकाल कर आप आए और हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली आपसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में हीट वेव और लू से बचाव के क्या तरीके और उपचार हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आज हमें डॉक्टर पीके गुप्ता। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रयोगों से मानव जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का कार्य किया। इनके द्वारा किए गए प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम्फ्री डेवी का जन्म 17 दिसंबर सन 1778 को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल क्षेत्र के छोटे से नगर पेंजिस में हुआ। इनके पिता एक साधारण कारीगर थे और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन डेवी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और काफी जिज्ञासु छात्र थे। इन्हें प्रकृति, पेड़ पौधों और रसायनों से जुड़े छोटे छोटे प्रयोग बहुत आनंद देते थे। बचपन में ही इन्हें ये समझ आ गया था कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा माध्यम विज्ञान है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। जब ये किशोर अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया, इसलिए इन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। बाद में इन्होंने एक डॉक्टर और सर्जन के यहाँ प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। यही वो समय था जब इनकी रुचि चिकित्सा और रसायन विज्ञान की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई। काम के दौरान हम्फ्री डेवी को वैज्ञानिक पुस्तकों और प्रयोगों का अवसर भी मिला। इन्होंने स्वयं अध्ययन करके रसायन विज्ञान की गहरी जानकारी प्राप्त की। जल्द ही इनकी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगी और ये काफी प्रसिद्ध भी हो गए। इन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध ब्रिस्टल न्यूमेटिक इंस्टीट्यूशन में काम करने का अवसर मिल गया। यहाँ पर इन्होंने विभिन्न गैसों का प्रयोग शुरू किया। उस समय वैज्ञानिक गैसों के प्रभावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हम्फ्री डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस पर काफी शोध किया। यह गैस सूंघने पर मनुष्य को हंसी और आनंद का अनुभव कराती थी, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहा जाने लगा। हम्फ्री डेवी ने ये भी खोजा कि ये गैस दर्द कम करने में सहायक है या नहीं। आगे चलकर इसी खोज का उपयोग ऑपरेशन और दंत चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में किया जाने लगा। हम्फ्री डेवी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विद्युत और रसायन विज्ञान को जोड़कर नए तत्वों की खोज करना है। उस समय वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि बिजली की सहायता से रासायनिक पदार्थों को अलग किया जा सकता है। हम्फ्री डेवी ने विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की तकनीक का उपयोग करके कई नए तत्वों को अलग करने में बहुत सफलता पा ली। इन्होंने पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्वों को पहली बार शुद्ध रूप में प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोशियम जैसे तत्वों पर भी काफी शोध किया। इनकी इन खोजों ने आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव को काफी मजबूत करने का काम किया। आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो तकनीकें उपयोग होती हैं उनमें हम्फ्री डेवी के प्रयोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 19वीं शताब्दी में कोयला खदानों में काम करना काफी खतरनाक माना जाता था। खदानों में मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसें जमा हो जाती थी और साधारण दीपक की लौ से विस्फोट हो जाया करते थे। इन दुर्घटनाओं में अनेक मजदूर भी अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन हम्फ्री डेवी ने इस समस्या को समझा और एक विशेष प्रकार का सुरक्षित दीपक यानी कि लैंप बनाने का काम किया। इस दीपक में लौ को महीन धातु की जाली से ढक दिया जाता था जिससे गैसों में आग नहीं फैलती थी। इस आविष्कार ने हजारों खनिकों की जान बचाने का काम किया। इनका ये आविष्कार आज भी विज्ञान और मानव सुरक्षा के इतिहास में एक महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। हम्फ्री डेवी की प्रतिभा के कारण इन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइट की उपाधि दी गई। ये हमेशा से मानते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल नई चीजों को खोज करना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना है। हमेशा युवाओं को प्रयोग करने, सवाल पूछने और नई खोज करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। लगातार प्रयोगों और रसायनों के संपर्क में रहने के कारण इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और 19 मई सन 1829 को स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया। हम्फ्री डेवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो व्यक्ति को नहीं रोक सकती। जिसके अंदर सीखने और कुछ नया करने का जुनून हो वो हमेशा आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज खोज और आविष्कार में ड्रोन के बारे में। तो अब एक ऐसी मशीन की बात करने वाले हैं जो हवा में उड़ती है और कहीं भी पहुंच सकती है। ये देखने में जितनी छोटी है उतनी ही ये कारगर भी है और बहुत इसके उपयोग है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रोन की। ड्रोन एक ऐसा मशीन है जो मानव रहित हवाई जहाज है और इसे यूएई जैसे विमानों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे विमान होते हैं ये जिनमें कोई चालक दल या यात्री नहीं होता। ये स्वचालित ड्रोन या दूर से संचालित वाहन आरपीवी हो सकते हैं। यूएवी
नियंत्रित गति और ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका में पहले पायलट रहित वाहन विकसित किए गए थे। ब्रिटेन के एरियल टारगेट एक छोटे रेडियो नियंत्रित विमान का पहली बार मार्च 1917 में परीक्षण किया गया था, जबकि कैटरिंग बग के रूप में जाना जाने वाला अमेरिकी हवाई टॉरपीडो पहली बार अक्टूबर 1918 में उड़ा था। हालांकि दोनों ने उड़ान परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखाए थे, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों का परिचालन में उपयोग नहीं लिया गया। युद्ध के बीच की अवधि में मानव रहित विमानों का विकास और परीक्षण जारी रहा। 1935 में ब्रिटिशों ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए लक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने वाले कई रेडियो नियंत्रित विमान बनाए। ऐसा माना जाता है कि ड्रोन शब्द का इस्तेमाल इसी समय शुरू हुआ, जो इन मॉडलों में से एक DH-82B क्वीन बी के नाम से प्रेरित था। रेडियो नियंत्रित ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निर्मित किए गए थे और लक्ष्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग भी किया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल कई नई भूमिकाओं में भी किया जाने लगा था, जैसे कि युद्ध में प्रलोभन के रूप में काम करना, तय लक्ष्यों पर मिसाइल दागना और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के लिए। हाल के वर्षों में ऐसे मॉडल विकसित किए गए हैं जो लंबी उड़ानों में ईंधन भरने की समस्या से निपटने के लिए सौर ऊर्जा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके काम करने लगे हैं। ड्रोन अब कई काम कर रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी, फिल्मांकन और सामान पहुंचाना भी इसमें शामिल हो चुका है। इनका उपयोग अधिकतर उन क्षेत्रों और भूभागों में निगरानी के लिए किया जाता है जहां सैनिक सुरक्षित रूप से नहीं जा पाते, लेकिन इनका उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता है और इन्हें संदिग्ध आतंकवादियों को मारने का श्रेय दिया जाता है। तो ड्रोन क्या है ये हम सभी जानते हैं। आज ड्रोन हम सभी ने देख रखा है, इसके इस्तेमाल के बारे में भी हमें जानकारी है, लेकिन ड्रोन का शुरुआती जो इस्तेमाल था वो बहुत सीमित था और इसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाइयों के लिए ही किया जाता था। तो ड्रोन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो चुका है, विस्तार ले चुका है और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ती चली गई हैं। आज ड्रोन के माध्यम से लोग सामान पहुंचाना भी शुरू कर चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी चीज़ की कोई अंतिम सीमा नहीं है, उसमें हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास होता रहता है। इसी तरह विज्ञान में आज ड्रोन में लगातार बदलाव आते चले जा रहे हैं और अब ऐसे ड्रोन भी आने लगे हैं जो इंसान को लेकर उड़ सकते हैं। ड्रोन अलग अलग तरीके के देख चुके हैं और भविष्य में हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से हम जिस तरह से आज हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम ड्रोन के माध्यम से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और शायद ऐसा मुमकिन हो कि ड्रोन भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन जाए। कुछ भी हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। तो हमने आज ढेर सारी बातें कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली और अब चूंकि हमारे स्टूडियो का समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में आपने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सपना देखा है तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी चाहिए और पूरे लगन पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

101.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पश्चात श्रोताओं, आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। लेकिन उसके पहले आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों से अवगत करा दूं।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करा दूं। अब से 4:35 पर यानी कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:00 का वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोग, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी और 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया दोनों की प्रस्तुति संजीव कुमार ला। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा

बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनी गंधा। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स।

10:30 पर आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा, 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनहरी यादें। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज के कलाकार होंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट। ग्यारह बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। जिंदगी कभी धूप की तरह तपाती है तो कभी बरसात बनकर भी गो जाती है, कभी अपनों की भीड़ में तन्हा कर देती है तो कभी अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच यही है कि यह हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। हार मिले तो सब्र सिखाती है और जीत मिले तो शुक्रिया कहना। कुछ लोग मिलते हैं और याद बन जाते हैं, कुछ बिछड़ते हैं और सीखते जाते हैं, लेकिन सफर चलता ही रहता है क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं। एक जिंदगी को इतना भी गंभीर मत बनाइए, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। उलझनों ने मेरी राह आसान कर दी और हर ठोकर ने जीन

जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन एक सच हमेशा याद रखिए, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं तराशने आती हैं। अगर रास्ते में संघर्ष ना हो तो मंजिल की अहमियत भी समझ नहीं आती। जो लोग गिरकर संभलना सीख जाते हैं वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनते हैं। कभी अपने हालात को देखकर निराश मत होइए। आज का अंधेरा कल की रोशनी की तैयारी भी हो सकती है। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, बस हौसला और मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। याद रखिए, धीमी रफ्तार से चलना गलत नहीं, गलत तब है जब हम चलना ही छोड़ दें। हवा के खिलाफ चलने वाला ही अक्सर मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ हमेशा ज्यादा होती है।

दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल ही तो है, कभी शोर करे, कभी हंसाए, कभी रुलाए, कभी घबराए। तो दिल को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल है तो खुशी और गम दोनों आएंगे ही आपके ज़िंदगी में, तो दिल कभी कभी बच्चा भी बन जाता है, क्यों, है ना?

0: ये थी सान सरगम की आज की अंतिम प्रस्तुति। जिंदगी की बातें भी अजीब होती है, कभी हंसा देती हैं, कभी रुला देती हैं। तो कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत लू लगने की वजह से हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति।
1: और मैं वैभवी। हमारी ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में, विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस की।
0: बिल्कुल वैभवी, हर साल 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली का सम्मान किया जा सके।
1: सही कहा, हमारी दुनिया रंग बिरंगी संस्कृतियों से भरी हुई है। कहीं अलग खाना खान पान, कहीं अलग पहनावा, तो कहीं अलग त्योहार और रीति रिवाज। यही विविधता दुनिया को खूबसूरत बनाती है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि जब लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं तब आपसी प्यार, सम्मान और भाईचारा बढ़ता है।
1: दोस्तों,

0: सोचिए, अगर पूरी दुनिया में सब कुछ एक जैसा होता, एक ही भाषा, एक ही खाना, एक ही संगीत, तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाती।
1: बिल्कुल, भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना संगीत और अपनी परंपरा है, फिर भी हम सब एक हैं।
0: यही तो है अनेकता में एकता की असली पहचान।
1: वैभवी, क्या तुम्हें पता है कि इस दिन को मनाने की शुरुआत यूनेस्को ने की थी?
0: हाँ, इसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि सांस्कृतिक विविधता केवल अलग अलग परंपराएं नहीं, बल्कि विकास और शांति की ताकत भी है।
1: सही कहा, जब हम दूसरों की संस्कृति को समझते हैं, तब हमारे विचार भी खुले होते हैं। हम नई चीज़ों को सीखते हैं और समाज में सहनशीलता बढ़ती है।
0: बिल्कुल, लेकिन आज के समय में कई बार लोग धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्यों प्रीति?
1: हाँ बिल्कुल वैभवी, हमें यह समझना चाहिए कि हर संस्कृति की अपनी खासियत होती है। किसी की संस्कृति छोटी या फिर बड़ी नहीं होती है।
0: दोस्तों, अगर हम किसी भी भाषा को नहीं जानते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति कम समझा जाए या वह कमजोर है। हर भाषा अपने आप में अनमोल होती है।
1: बिल्कुल, और संस्कृति केवल कपड़ों या त्योहारों तक सीमित नहीं है। इसमें हमारे विचार, व्यवहार, कला, संगीत, नृत्य और जीवन जीने का तरीका भी शामिल होता है।
0: प्रीति, तुम्हें कौन सी भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक चीज सबसे ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो भारत के त्योहार बहुत पसंद है, चाहे दिवाली हो, ईद उल फितर हो, क्रिसमस हो, बिहू हो, हर त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करता है।
0: मगर मुझे तो अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य और संगीत बेहद पसंद है, जैसे पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा और झारखंड का छऊ नृत्य।
1: सच में हमारी संस्कृति जितनी विविध है उतनी ही खूबसूरत भी।
0: दोस्तों, आज के दिन हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हर संस्कृति का सम्मान करेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे।
1: और बच्चों व युवाओं को भी अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए,
0: क्योंकि जब संवाद बढ़ता है तभी विकास होता है। यही इस दिवस का मुख्य संदेश है। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता बेहद जरूरी है।
1: सोशल मीडिया के इस दौर में हम दुनिया की कई संस्कृतियों को करीब से देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने। आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सामान्य महसूस करे।
0: बिल्कुल सही कहा प्रीति। दोस्तों, और भी बातें करेंगे हम, लेकिन अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है।

0: समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
4: दोस्तों, हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जागरूक करना और शांति, एकता और

0: मानवता का संदेश देना है।
1: साथ ही यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी याद किया जाता है।
0: बिल्कुल वैभवी, आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है।
1: सही कहा, आतंकवाद का मकसद लोगों में डर और असुरक्षा फैलाना होता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है।
0: और सबसे दुख की बात यह है कि आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। यह लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करता है।
1: लेकिन दोस्तों, हमें समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंसा कभी किसी धर्म या इंसानियत की पहचान नहीं हो सकती।
0: वैभवी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और क्या तुम्हें लगता है कि इसका आतंकवाद से भी कोई संबंध है?
1: हाँ बिल्कुल, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जा रहा है और गलत कामों के लिए भी। कई बार अफवाहें, नफरत भरे संदेश और गलत जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही फैलाई जाती हैं।
0: इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिना जांचे परखे किसी भी खबर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
1: सही कहा, अगर कोई संदिग्ध संदेश या गतिविधि दिखे तो तुरंत परिवार, शिक्षक या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देना चाहिए।
0: दोस्तों, देश की सुरक्षा केवल सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। एक जागरूक नागरिक बनकर हम भी देश की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, छोटी छोटी जो सावधानियां होती हैं ना, वही हमें बड़ा फर्क देखने को मिलता है।
0: दोस्तों, भारत हमेशा से शांति और अहिंसा का समर्थक रहा है। महात्मा गांधी ने भी हमें प्रेम और अहिंसा का रास्ता दिखाया है।
1: और यही रास्ता समाज को मजबूत बनाता है। हिंसा केवल विनाश लाती है, जबकि प्रेम और संवाद लोगों को जोड़ते हैं।
0: आज ज़रूरत है कि हम बच्चों और युवाओं को सही शिक्षा और अच्छे संस्कार दें, ताकि वे गलत रास्तों पर ना जाएं।
1: क्योंकि कई बार भटके हुए युवा ही आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं।
0: सही कहा, इसलिए परिवार, स्कूल और समाज की जिम्मेदारी है कि युवाओं को सही दिशा दें।
1: प्रीति, क्या तुम्हें लगता है कि केवल सरकार के प्रयास ही काफ़ी हैं?
0: नहीं, इसमें पूरे समाज की भागीदारी ज़रूरी है। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक आतंकवाद जैसी समस्याओं से पूरी तरह नहीं लड़ा जा सकता है।
1: और जागरूकता की शुरुआत जो है वो अपने घर के आसपास से ही की जा सकती है।
0: बिल्कुल, हमें एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और विचारों का सम्मान करना चाहिए। जब समाज में भाईचारा होगा, तब नफरत फैलाने वाली ताकतें कमजोर पड़ जाएंगी।
1: दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गुस्सा और हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज के दिन हम उन वीर सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को भी सलाम करते हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिए।
0: उनकी बहादुरी और त्याग की वजह से ही हम सुरक्षित वातावरण में रह पाते हैं।
1: सच में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: दोस्तों, हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। देशभक्ति केवल बड़े बड़े भाषण देने से नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनने से साबित होता है।
1: जैसे कानून का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना और समाज में शांति बनाए रखना।
0: वैभवी, अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करें, तो समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा।
1: बिल्कुल, और यही सकारात्मक सोच आतंकवाद जैसी नकारात्मक ताकतों को कमजोर करती है।
0: आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी नफरत, हिंसा और अफवाहों को समर्थन नहीं करेंगे।
1: हमेशा मानवता, एकता और शांति का पालन करेंगे। तो आज हमने बात करी आतंकवाद के ऊपर, और आज बहुत सारे और भी खास घटनाएं हुई थी जिन विषय पे भी हम बात करेंगे। आज इतिहास में आज का दिन क्यों खास रहा, इस बारे में हम बात करेंगे।
0: जी हाँ, साल 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के
1: त्रिपेंद्र बर दूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद, हिंसा के खिलाफ जागरूक करना और शांति तथा एकता का संदेश देने के लिए राजीव गांधी

0: के मृत्यु के दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाकर किया जाता है।
1: साल 1994 में आज ही के दिन भारत की बेटी सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था।
0: वे भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था।
1: आज हम जिसे तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को देखते हैं, उसकी नींव ऐसी ही छोटी छोटी कदमों से रखी गई थी।
0: अब हम चलते हैं विश्व इतिहास की ओर। दोस्तों, खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है,
1: क्योंकि साल 1904 में आज ही के दिन विश्व फुटबॉल संस्था फीफा की स्थापना हुई थी।
0: आज फीफा दुनिया भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्थान है।
1: दोस्तों, 21 मई विमान इतिहास में भी बहुत खास माना जाता है।
0: साल 1927 में
1: दुनिया भर में विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस भी मनाया जाता है।
0: इस दिन का उद्देश्य दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान करना है।
1: भारत को खुद सांस्कृतिक विविधता का सबसे सुंदर उदाहरण है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, पहनावा, खान पान और परंपरा है।
0: फिर भी हम सब एक हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे।

0: दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में बात करेंगे करेंट अफेयर्स की, यानी कुछ खास बातें जो अभी 21 तारीख से पहले घटी हैं। जैसे शतरंज खिलाड़ी अरविंद चिदंबरम ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में क्वालिफाई करके भारत के पहले खिलाड़ी बन गए।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के नए CEO IAS अधिकारी सौरभ विजय को बनाया गया है।
0: साल 2026 में आयोजित एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 1 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज कुल 10 पदक जीते।
1: भारत का तीसरा NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एज इंटर्नशिप की स्थापना बिहार के हाजीपुर में स्थापित की जाएगी।
0: ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल्स 2026 का नोवेक जोकोसी ने अपने नाम खिताब जीतकर किया। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ के कुल कारोबार को पार करके सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक भारत का सबसे बड़ा शहरी सरकारी बैंक बन गया। भारत में एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना MSP की शुरुआत ओडिशा में की गई। ये भारत का पहला ऐसा तटीय प्रबंधन योजना है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी, रोचक तथ्यों के माध्यम से। दुनिया में एक ऐसी भी झील है जिसमें आप डूबते नहीं हैं, डेड सी। यहाँ मौजूद खारा पानी जो है जिसमें आप डूब नहीं सकते हैं। यह झील जो है वो समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल से घिरा हुआ है।
1: क्या आपको पता है पेड़ भी बात करते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ ज़मीन के अंदर फंगस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को
0: खतरे की जानकारी देते हैं। दोस्तों, धरती पर मौजूद चींटियों का कुल वजन दुनिया के सभी इंसानों के कुल वजन से कई ज़्यादा है।
1: केला वास्तव में बेरी होता है और बेरी कहे जाने वाले स्ट्रॉबेरी वैज्ञानिक रूप से बेरी नहीं है।
0: दोस्तों, हमारा दिमाग दिन में लगभग 20,000 से ज़्यादा विचार सोच सकता है। तो है ना ये कुछ अमेजिंग बातें दोस्तों कार्यक्रम।

0: आखिर में हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक सतर्क युवा जो है वही सुरक्षित युवा बन सकता है। सतर्कता कई मायनों में ज़रूरी है। जैसे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने OTP को शेयर करने से पहले सतर्क हो सकते हैं। फेक जॉब ऑप्शंस हमारे लिए आते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप थोड़ा जांच परख लें कि क्या वो सही हैं या फेक हैं। सोशल मीडिया पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फ़ोटोज़ हमें बिल्कुल पोस्ट नहीं करने चाहिए। इससे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो इस्तेमाल है वो गलत रूप में हो सकता है। आतंकवाद भी इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जानकारियों को एकत्र करके। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें करी। हमारे पास और भी बातें हैं आपसे करने को, लेकिन समय हो चला है हमारे जाने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं वैभवी,
1: मैं प्रीति,
0: हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोग।

0: नमस्कार श्रमिक साथियों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जानकारियों, बातों और गीतों से सजी इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ है आकांक्षा और मेरे साथ है रंजना। आपको नमस्कार रंजना,
1: और सभी साथियों की रंजना की ओर से भी स्नेह भरा नमस्कार, और तुम्हें भी आकांक्षा नमस्कार। साथियों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना सेहत के लिए एक बेहतरीन और मुफ्त की दवा है।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। खुलकर हंसने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है रंजना, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ साथियों, खुश मिजाज रहने से हम दूसरों के साथ भी बेहतर ढंग से पेश आते हैं।
1: हाँ साथियों, हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से हंसते और मुस्कुराते हुए मिलें, आपस में भाईचारा का बढ़ावा दें, तो हमारे देश में शांति और सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। और ये बात तो हमने कही, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है, और इसीलिए हम सभी को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना होगा। आतंकवाद केवल हिंसा ही नहीं फैलाता है, बल्कि देश की शांति, सुरक्षा और विकास को भी प्रभावित करता है। और ये बता रहे हैं साथियों, आतंकवाद हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ही खतरा है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, इनके जरिए भी बहुत सारे गलत विचार फैलाए जाते हैं, बहुत तेज़ी से फैल जाती है, और युवा जो हैं वो इस गलत विचारधारा के प्रति भटक जाते हैं और अपना गलत रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युवाओं को सही दिशा और सोच के प्रति जागरूक करने का, और इसलिए भी इसके साथ के उद्देश्य के साथ भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। और आपको भी ये जानकारी दे दें साथियों कि आज का यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में इनकी हत्या कर दी गई थी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और

0: इनकी दुखद मृत्यु के बाद साथियों केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर हर साल आज के दिन यह दिवस मनाने की घोषणा की। मानवता की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। इसलिए हिंसा के बजाय संवाद और शांति को बढ़ावा देना जरूरी है साथियों, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा साथियों जब हम आप सब मिलकर इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घरों से करेंगे। यहाँ साथियों हिंसा नहीं शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाइए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, शांति और एकता ही समाज को मजबूत बनाती है।
1: और साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बताते चले आपको कि आज हम संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी मना रहे हैं, और इस खास दिवस को मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं और सभी की अलग अलग परंपरा और संस्कृति है। जब हमें मौका मिलता है तो दूसरे देशों में भ्रमण के लिए हम वहाँ के सांस्कृतिक कला भाषा से अवगत भी होते हैं।
0: बिल्कुल, और यही तो इस दिन को मनाने का मकसद है साथियों, कि हम एक दूसरे राज्य या देश की संस्कृति कला भाषा और रीति रिवाजों को समझें और सम्मान करें। इससे संवाद यानी बातों को समझने और समझाने में आसानी होती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी उद्देश्य के साथ 2002 में इस दिवस को घोषित किया, ताकि दुनिया भर में सांस्कृतिक संवाद और समझ को बढ़ावा दिया जा सके।
1: बिल्कुल, इस दिवस के द्वारा सभी को जागरूक किया जाता है कि सभी को अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना और दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। साथियों आप सभी भी अपने अपने संस्कृति धरोहर कला भाषा को एक दूसरे के साथ साझा करें और आपसी समझ को बढ़ावा दें।
0: बिल्कुल सही कहा रंजना, और रंजना हम बातें ही करते रहेंगे या फिर अपने साथियों के लिए मनोरंजन के लिए कुछ इंतजाम भी करेंगे।
1: इंतजाम किया हुआ है आकांक्षा, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम सुनते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना। और रंजना, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथियों को किस विषय पर अभी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे?
1: हम लोग हमेशा हर दिन नई नई जानकारियाँ तो लेकर आते ही हैं अपने श्रमिक साथी को के लिए, लेकिन आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो है भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा किस तरह से देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये हमारा वार्ता है, तो वार्ताकार हैं प्रीति। तो आइए साथियों, सुनते हैं हम भारतीय हस्तशिल्प के बारे में।
2: मैं आज कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूं। मजदूर हूं मैं, कमाने को पैसे जो को उद्योग विकास एवं संभावनाएं परंपरागत शिल्प अभिव्यक्ति के साधन हैं, कभी भावों की अभिव्यक्ति तो कभी हस्त कौशल की। परंपरागत शिल्पकारी उद्योग वे उद्योग हैं जिनके उद्भव की जड़ें भारतीय सभ्यता में धंसी हुई हैं। इनके विकास की कहानी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय संस्कृति में सींचा गया है। भारतीय संस्कृति में ऐसे कई शिल्प एवं कलाकारियाँ हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है, जैसे झारखंड की कोबर चित्रकला, महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकाली, चेरियाल स्क्रॉल आदि। भारतीय परंपरागत शिल्प में बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, धातु कला एवं अन्य हस्तकला शामिल हैं। ये सभी कला एवं संस्कृति के आख्यान हैं। भारत की क्षेत्रीय विविधता को भी परंपरागत शिल्प बखूबी प्रस्तुत करते हैं। ये शिल्प लंबे समय से आजीविका का साधन भी रहे हैं। जैसे जैसे वैश्वीकरण एवं औद्योगिकरण फैल रहा है, वैसे वैसे इन उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिल्प कला के विकास से रोजगार के अवसर भी मिले हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं, साथ साथ उपभोक्ताओं की पसंद व वरीयताएं भी बदल रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि भारत विलासिता की वस्तुओं का अगला सबसे बड़ा बाजार होगा। ये शोध पत्र स्वयं ही भारतीय बाजार पर वैश्वीकरण का प्रभाव तथा बदलती प्राथमिकताओं को बताने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय शिल्प के प्रति लोगों में उदासीनता का भय भी दिखाई देता है। शिल्पकारी के बाजारीकरण ने भी भारतीय शिल्पों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।

बाजारीकरण ने ही भारतीय शिल्पों को एक से एक नवीन तकनीकों से अवगत कराया है। भारतीय शिल्पों को समर्थन देना भारतीय उद्योगपतियों के लिए गर्व की बात सी हो गई है। अतः बाजारीकरण भारतीय शिल्प के पुनरुद्धार के लिए लाभकारी साबित होता है। अतः भारतीय शिल्पकारी उद्योग के लिए औद्योगिकरण एवं वैश्वीकरण का मिश्रित परिणाम सामने आता है। भारतीय शिल्प उद्योग भारतीय कला एवं सभ्यता में गहरा सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ये उद्योग सदियों पुरानी परंपरागत विरासत और समकालीन आधुनिक समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के काम जैसे अग्निज शिल्पों को शामिल करने वाले ये उद्योग न केवल भारत में सांस्कृतिक परिदृश्य की समृद्धशाली विविधता को दर्शाते हैं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक पहचान को भी दर्शाते हैं। सदियों से ये कारीगरी पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों को संरक्षित करती है, जिससे उनके शिल्प सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक स्वरूप बन जाते हैं। गौरतलब है कि मशीनीकरण, वैश्विक बाजार दबाव और गैर कृषि रोजगार की ओर बदलाव सहित समसामयिक चुनौतियां इन प्रथाओं और कारीगरी समुदायों की आजीविका को खतरे में डालती है। कश्मीर में कश्मीरी वस्त्रोत्पाद पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव इसी का तो उदाहरण है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास रणनीतियों की आवश्यकता महसूस होती है, जो गुणवत्ता और सामुदायिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता दें। इसलिए इन उद्योगों के सांस्कृतिक महत्व को समझना उन नीतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है, जो कारीगरों को मान्यता और धारणीय आजीविका सुनिश्चित करते हुए उनके संरक्षण में सहायता करती है। भारत में कारीगरी उद्योग का ऐतिहासिक संदर्भ सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ जुड़े सामाजिक और आर्थिक विकास के एक समृद्ध चित्रपट को प्रदर्शित करता है। परंपरागत रूप से ये उद्योग हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारीगर समुदायों में फले फूले, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को और सांस्कृतिक पहचान को अभिन्न हिस्सा थे। हालांकि औद्योगिकरण के आगमन के साथ और वैश्वीकरण के कारण ऐसी चुनौतियां उभरी जिन्होंने इन शिल्पों के अस्तित्व एवं विशुद्धता को खतरे में डाल दिया। संगठनों ने तेजी से पारंपरिक ढांचों, पैटर्नों, डिजाइनों से अलग नवीन डिजाइन आदि जो नवाचार युक्त हैं उनसे बदलने पर जोर दिया। टिकाऊ शिल्प विधियों पर प्राथमिकताओं की पूर्वानुमान अर्थात बाजार में बिक्री की संभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है। इसके कारण वैश्विक बाजार में स्थानीय कारीगरों की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके अलावा उत्पादन संबंध में अति तीव्र परिवर्तन हुए हैं, जहां कारीगरों और विनिर्माण के आधुनिक मॉडल पर अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर तीव्र उत्पादन एवं आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता भी दी जा रही है। नतीजतन समकालीन चुनौतियों से निपटने और भारत में पारंपरिक कारीगर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं की खोज के लिए इन ऐतिहासिक गतिशीलताओं को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय शिल्प उद्योग में ऐतिहासिक गतिशीलता इसके उद्विकास की प्रक्रिया में ही निहित है। भारत में पारंपरिक शिल्प का विकास सांस्कृतिक विरासत और समकालीन आर्थिक मांगों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया को दर्शाता है, जो कारीगर उद्योग के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। ऐतिहासिक रूप से शिल्प ने सामाजिक पहचान को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारीगर क्षेत्र में तकनीकी और सांस्कृतिक आख्यानों के संरक्षण के रूप में कार्य किया है, जैसे मधुबनी पेंटिंग, लुप्त मोम तकनीक आदि का संरक्षण क्षेत्रीय समूह व समुदायों द्वारा एक लंबे समय से किया जा रहा कार्य है। जयपुर के नीले बर्तन की कारीगरी, राजस्थान की अजरक प्रिंट पेंटिंग इन सभी शिल्प के उदाहरण हैं, जो समुदाय की पहचान से भी जुड़े हैं। वैश्वीकरण अवसर व चुनौतियाँ दोनों ही उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संधारणीयता, पशु क्रूरता के प्रति जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय हस्तशिल्प की मांग भी बढ़ रही है। यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। अधिक विस्तृत विश्व दृष्टिकोण में स्थानीय कारीगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना सकते हैं, किंतु

0: विलय एवं स्थान बना पा लेने की होड़ में जीत के बावजूद कारीगरों को तकनीक बनाए व बचाए रखने के बारे में जो चिंता है वह यथावत ही बनी रहती है। अतः आवश्यकता महसूस होती है कि एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जाए जो न केवल इन परंपरागत शिल्पों को आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देता हो बल्कि इसमें निहित सांस्कृतिक अखंडता को भी संरक्षित करता हो या सुनिश्चित करता हो कि कारीगरों के ज्ञान को तेजी से बदलते बाजार में मान्यता दी जाए और महत्व प्रदान किया जाए। भारत में कारीगर उद्यमों को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी स्थिरता एवं विकास को खतरे में डालता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तेजी से वैश्विक बाजार में पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का संघर्ष है, जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन अक्सर हस्तनिर्मित वस्तुओं महत्व मांग को कम करता है। अधिक श्रम साध्य होने के कारण हस्तनिर्मित वस्तुएं महंगी भी हो जाती हैं, जबकि मशीन से निर्मित वस्तुएं सस्ती होती हैं। कारीगरों की पहुंच अत्याधुनिक तकनीकों तक काफ़ी सीमित ही होती है, इससे सस्ते मशीनी निर्मित विकल्पों के प्रति प्रतिस्पर्धा करने में वे समर्थ नहीं हो पाते। यह स्थिति प्रभावी सरकारी नीतियों की कमी के कारण है और ये और भी जटिल हो जाती हैं जो बेहतर बाजार एकीकरण और कारीगरों के लिए वित्त पोषण तक पहुंच को सरल कर सकती थी, किंतु इस कार्य में वे विफल हो गईं। वित्त पोषण पारंपरिक उत्पादन ढांचे में शिल्प के ऐतिहासिक लचीलेपन और अनुकूलन के बारे में चर्चा में गूंज उठा है। इसके अलावा कारीगर अक्सर वैश्विक मांग के रुझानों से कटे होते हैं, उनके उत्पाद संभावित खरीदारों तक कम ही पहुंच पाते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक सहायक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा दिया जाना जो नवाचार को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देता हो महत्व देता हो भारत में कारीगर उद्योग के विकास को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, अभी आप जानकारी ले रहे थे भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा कैसे दिया जाए, और बहुत अच्छी जानकारी दी है प्रीति ने।
2: और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम साथियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, आज जब भी आपके कानों में ये शब्द पड़ता है ना आकाशवाणी, तो दिल में एक अजीब सा सुकून और यादों का कारवां उमड़ पड़ता है। वो सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ रेडियो के पास बैठना और बैकग्राउंड में गूंजती वो आवाज, यह आकाशवाणी है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में तैरती इन आवाजों को यह इतना सुंदर इतना जादुई नाम आखिर दिया किसने? इसका सीधा कनेक्शन हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से है। जी हाँ साथियों,
2: और साथियों अब आपको हम इसके बारे में थोड़ी कहानी सुनाते हैं। आज़ादी से पहले साल 1936 के आसपास की बात है। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में रेडियो सेवा का नाम रखा था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे बाद में ऑल इंडिया रेडियो कहा गया। ऑल इंडिया रेडियो तो ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगा नाम, लेकिन लोग सोच रहे थे कि हमारे देश के कस्बों में गांवों में रहने वाले लोगों के लिए कोई एक ऐसा नाम हो जो स्वदेशी हो और हमारी भारत माता की मिट्टी से जुड़ी हो।
1: बिल्कुल, और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे नाम दिया आकाशवाणी। ये एक कवि नहीं थे, वे एक दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने अपनी एक कविता में रेडियो से प्रसारित होने वाली इस अदृश्य आवाज को सबसे पहले आकाशवाणी कहकर पुकारा था।
2: हाँ साथियों, आकाश यानी गगन और वाणी यानी आवाज, यानी एक ऐसी आवाज जो आकाश के रास्ते से चलकर सीधे आपके घर के कमरे में आपके दिलों तक पहुंचती है।
1: बिल्कुल, और टैगोर की कविता का यह एक शब्द इतना सटीक और प्रभावशाली रहा साथियों कि इसने इतिहास बदल दिया। जो रेडियो कभी सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत का एक सूचना तंत्र हुआ करता था, इस एक नाम से उसे भारतीय संस्कृति साहित्य और गौरव से जोड़ दिया गया। यह सिर्फ एक नाम नहीं बदला दोस्तों, यह रेडियो का भारतीयकरण था।
2: और फिर साल 1947 जब आज़ादी के बाद आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के साथ आकाशवाणी नाम को हमें

0: महसूस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश की असली ताकत की।
1: जी हाँ साथियों, अब हम अगला चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की असली ताकत, हमारे वो भाई बहन जो सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं, चाहे वो खेतों में काम करने वाले किसान मजदूर हो, शहरों में मकान बनाने वाले राजमिस्त्री हो, या फिर रेहड़ी पटरी लगाने वाले हमारे दुकानदार भाई हो, या घरों में काम करने वाली बहनें हो, हमारा यह पूरा असंगठित क्षेत्र ही देश की तरक्की की असली रीढ़ है
0: साथियों। लेकिन अक्सर हमारे ये मजदूर भाई बहन दिन रात तो मेहनत करते हैं, पर जब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात आती है तो ये पीछे छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता है कि ये श्रमिक है या नहीं।
1: लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार आपके लिए एक बहुत ही मजबूत और सीधा रास्ता लेकर आई है, जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। जी हाँ साथियों, ई श्रम पोर्टल आज के समय में हमारे देश के करोड़ों श्रमिकों को सीधे सरकारी योजना से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है।
0: हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे कि यह ई श्रम पोर्टल आखिर है क्या, इससे हमारा क्या फायदा है? तो आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल सरकार का एक ऐसा डिजिटल मंच है जहां देश के किसी भी कोने का असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही अच्छी बात है ना ये आकांक्षा। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर के अब चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे साथियों, ना किसी बिचौलिया का सामना करना पड़ेगा, बस आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर लेकर अपने पास के किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाइए, वहाँ आपका आसानी से मुफ्त में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और आप चाहे तो खुद अपने मोबाइल से भी eshram.gov.in पर जाकर इसे रजिस्ट्रेशन यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको 12 जी हाँ साथियों, आपको 12 अंकों का एक UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाला ई श्रम कार्ड आपको मिल जाएगा।
0: और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि यह कार्ड पूरे देश में मान्य रहेगा, हर जगह मान्य रहेगा। आप किसी भी राज्य में काम करने जाएं, आपकी पहचान एक श्रमिक के रूप में हमेशा पक्की रहेगी। इस कार्ड के बनते ही आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। भगवान ऐसा समय ना दे, लेकिन हाँ, आपके लिए ये जो
1: बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ आप जरूर लें। भविष्य में सरकार जब भी श्रमिकों के लिए कोई आर्थिक मदद, पेंशन योजना, मुफ्त राशन या स्वास्थ्य से जुड़ी योजना लाएंगी तो उसका सीधे फायदा आपको होगा साथियों। इसलिए ई श्रम पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन या अपना खाता जरूर खुलवाएं। और इसे जो भी बीच में जो बिचौलिए हैं होते हैं ना, वो हमारे जो श्रमिक साथी उनसे बच सकेंगे अगर वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन या फिर CSC केंद्र पर जाकर।
0: और साथियों, हमारे जो श्रमिक भाई बहन है, ई श्रम पोर्टल का एक सरकारी वेबसाइट नहीं है यह आप सभी के सुरक्षित और मजबूत भविष्य की चाबी है। अब देश के सारे श्रमिक इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। और श्रमिक साथियों, आप बहुत सारे लाभ, जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं चला रही हैं, वो आप ई श्रम पोर्टल पर जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और रंजना,
0: बहुत आसान भी है, बस आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाते की जानकारी चाहिए और मोबाइल नंबर।
1: तो अब कितना आप जानकारियां देंगी, कुछ जानकारियां अगले दिन के लिए भी जरूरी है ना, क्योंकि समय भी हो चला है हमारे साथियों से विदा कहने का। और इसी तरह साथियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम फिर किसी दिन मिलेंगे कुछ नई जानकारियों बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त आकांक्षा
0: और रंजना को दे इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली में ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी काम अधूरा ना रहे और हर योजना लाभुकों तक अवश्य पहुंचे। इसके लिए उपायुक्त ने जिला प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की हिदायत दी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार जहर खाने के कारण तबियत खराब होने पर पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजन की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रादेशिक मुख्य समाचार के पहले आपने सुना था श्रमिक लोक, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। अभी आपने सुना प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी

0: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन मनकर स्वागत है। संध्या बहन
1: और मनीष भाई कर जोहार।
0: बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और संध्या बहन बहन देखो आज कर जो कार्यक्रम है उकर में हमरे मन का जुगाड़ लेके आई के बताए देवीला मैं। तो देखो आज हमरे सबसे पहले जे है चर्चा करब कि जैसे बदले ला मौसम तो उकर अनुरूप हमरे खेती कैसे कर सकेला। उकर पाछे आज कर बात में हमरे धान कर सीधी बुनाई कैसे कर सकेला इकर बारे में जानकारी करब। इके बतावे श्री ओपी शर्मा और एगो कृषि गीत सुनब इग्नेश कुमार संगी मनकर गावल। इकर पाछे नवा उमर कर नवा फसल में रोहन कुमार महतो जे बैगन कर खेती करे ना उनकर से करल गोइट के सुनब। ती है आज कर किसानवाणी कार्यक्रम कर हमरे कर सामग्री जे हमरे बजाव और रौरे मन के सुनाब।
0: हाँ हाँ तो मनीष भाई ईसन है कि मौसम कर हाल तो देखबे करो थी।
1: हाँ हाँ
0: दिन भर तेज रौद रहे है नी।
1: हाँ
0: कनो कनो दोपहर बाद तेज हवा कर संगे वर्षा होए के संभावना मौसम विभाग बटले बताल जाए है। तो राजधानी रांची कर तापमान ई लखे रहलक आई जे अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहे कास रहे।

0: संध्या बहिन, और देखत ही आजकल हमरे मन जे मौसम उतार चढ़ाव लागल है, कखनो बरखा होत है तो कखनो ठंड जैसन लागत है, तो मुरुक रौद कखनो कखनो लागत है, तो ऐसन मौसम में हमरे मन के खेती करूँ ध्यान रखे के जैसे बदलत है मौसम, तो जैसे ठंड से गर्मी आवत है, तो हमरे मन के गर्मी कर जे फसल है उके लगाए के।
1: हाँ, और जैसन मौसम है ओहे अनुसार हमरे के खेती करे के है नी।
0: एकदम बदले ला मौसम, तो बदले मौसम के देखे के और जाने के कि अब मौसम कौन मौसम आवत है, उकर अनुरूप हमरे के खेती बाड़ी कर काम करे के।
1: मौसम बड़ा अनिश्चित लखिया है, काले कि कखने देखब रौद रहेला, कखने तुरते पानी आ देवेला और ठंडा हो जाएला।
0: हाँ हाँ
1: तो अपन ध्यान तो रख के है, काले कि अपन ध्यान नहीं रखब तो खेती बाड़ी कर काम काज तो देखो सालों भर होवेला, तो काम काज बढ़िया से करके ले हमरे के अपने आप के हों स्वस्थ रखे खे।
0: और मौसम के हों जाने के कि कहिया बरखा हुई, कहिया रौद रही, कहिया फिर से ठंड जिसन लागी, उके हों जाने के, और मौसम विभाग से जे मिले ले जानकारी उके हों हमरे मन के माने के और उके हों लेके चले के।
1: हाँ हाँ, और संगे संगे देखो अगर कृषि विज्ञान केंद्र से हो सलाह लेके खेती करब तो और बेस हुई है नी।
0: एकदम।
1: तो भाई अब कार्यक्रम के आगे बढ़ेला और
0: हाँ, तो
1: जानकारी करी ला है नी।
0: एकदम, तो जानकारी देखो आज भाई बहन मन हमरे मन जे जानकारी लेके आई है, वो जानकारी है धान कर जे सीधा बुनाई होएला उ का तेरी होएला और कैसे करे के चाहिए, उकर बारे में जानकारी है। और इनके बताते हैं श्री ओपी शर्मा और इनकर से गोठियाई है मनोज कुमार।
1: हाँ चलो सुनब।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बात करेंगे धान की सीधी बुवाई के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री ओपी शर्मा, वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक केंद्र मोराबादी रांची। शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार।
2: जैसा कि हम बात कर रहे हैं धान की सीधी बुवाई के बारे में, तो ये सीधी बुवाई है क्या?
3: धान की सीधी बुवाई एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें धान को बिना खेत में कादो किए हुए सूखी जमीन में जिसमें थोड़ा बहुत नमी होती है खेत को तैयार करना पड़ता है, और उस समय धान की सीधी बुआई बिना खेत में कादो किए हुए धान की सीधी बुआई एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिस मशीन का नाम सीड ड्रिल, या हम लोग इसको जीरो टिलेज मशीन भी बोलते हैं। तो इस मशीन के द्वारा धान की सीधी बुआई बिना नर्सरी किए हुए, किसान भाई जनरली पहले नर्सरी तैयार करते हैं और उसकी फिर रोपाई करते हैं जिसमें उनकी जो खर्च है काफ़ी बढ़ जाती है। खर्च को कमी करने के लिए, खर्च की कटौती करने के लिए और सही समय पर धान की बुआई अगर करनी है किसान को, जिसका फ़ायदा किसान को लेना है कम खर्च में और सही समय पर धान का खेती और बुआई करना है, तो इस तकनीक का प्रयोग करके हम सही समय पर धान की सीधी बुआई कर सकते हैं जिसे हम धान की सीधी बुआई तकनीक आप बोल सकते हैं,
2: कर सकते हैं।
3: एक तकनीक है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता है, कभी कभी लेट से मानसून आती है, कभी कभी किसानों को पानी के समस्या जो है कारण नर्सरी भी देर से होती है और धान की रोपाई भी देर से होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको सही उपज नहीं मिलती है।
2: इसका सही समय क्या है
3: धान की सीधी बुआई के लिए? इसका सही समय 20 मई से लेके 30 जून तो अगर आप बोले तो पूरा जून महीने, और नहीं तो लास्ट वीक ऑफ जून में इसकी कंप्लीट हम लोग बुआई कर देते हैं। मतलब पूरा जून महीने में जिस समय बारिश खेत में थोड़ा बहुत नमी हो जाती है उस समय ट्रैक्टर से 2-3 बार खेत की जुताई करके और फिर समतलीकरण करना भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना समतल किए हुए ज़मीन में पानी भी ज़्यादा खपत होती है और किसानों को पानी की समस्या से भी रूबरू होना पड़ता है। इसलिए खेत को समतल करके अगर चाहें वो हल के पीछे पाटा लगाकर, और नहीं तो एक मशीन आती है लेजर लैंड लेवलिंग जो ट्रैक्टर में जोड़ के और खेत को समतल करने का काम करता है, और नहीं तो किसानों के पास में जो उपलब्ध संसाधन है ट्रैक्टर में जैसे कल्टीवेटर से खेत की जुताई करके और फिर पाटा उसमें मार देने से भी खेत समतल हो जाता है। अभी तो रोटावेटर भी जो खेत को जुताई भी करता है एक बार में ही,

0: या दो बार में खेत को जुताई करके और समतल भी बना देता है। तो खेत को समतल भी इसमें करना आवश्यक होता है।
1: अगर हम स्थान की बात करें तो किस किस खेत में हम इसको लगा सकते हैं?
0: स्थान जहाँ तक किसानों का, जो जैसे कि जानते हैं किसान भाई, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम लोग दोन एक जो नीचे वाली ज़मीन है उसमें, या नहीं तो अगर उस तरह का खेत नहीं है तो हम लोग दोन दो, जिसको मध्यम ज़मीन भी बोलते हैं, उसमें हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और बहुत ही सूटेबल, मतलब उपयुक्त माना जाता है धान की सीधी बुआई के लिए।
1: जैसे कि धान की सीधी बुआई के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन किसान इसे जुड़ सकते हैं और कौन किसान इसको लगा सकते हैं?
0: किसान का इस तकनीक से जुड़ने के लिए किसान को इस तकनीकी का उपयोग करने की तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए, और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके पास पानी की सुविधा, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा या स्रोत होनी चाहिए, खेत समतल होनी चाहिए, और उनका जो खेत में जो खरपतवार का जो उपयोग होता है, खेत में जो खरपतवार निकलते हैं, अगर धान में सीधी बुआई में खरपतवार की थोड़ी समस्या होती है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करने का भी किसानों को ज्ञान होनी चाहिए, किस समय में हमको किस खरपतवार नाशी का उपयोग करना है। तो ये तीन चार कंडीशन अगर किसान करना, इसमें ज़रूरत होता है, सही समय पर धान की बुआई होती है, खरपतवार भी इसमें देना होता है, और कभी कभी सिंचाई की अनिश्चितता में सिंचाई भी देनी पड़ती है, तो वैसे किसान का इसमें चयन किया जाता है जिनके पास ये तीन चार जो कंडीशंस हैं उनके पास होनी चाहिए तो अच्छा माना जाएगा।
1: बीज दर क्या होगी इसमें?
0: परंपरागत जो तकनीक है किसानों का, जिसमें हम लोग धान का सीधा बुआई करते हैं हाथ से, ऊपरी ज़मीन में या मध्यम ज़मीन में किसान अभी भी खेत को जोत के और उसमें धान की बुआई करते हैं, तो धान की बुआई उसमें ज़्यादा बीज लगता है। अगर आप हाथ से बीज की बुआई करते हैं तो उसमें लगभग 80 से 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, जो कि काफ़ी उसमें खर्च होता है, और उस धान को ही अगर हम लोग इस जीरो टिलेज तकनीक से अगर बुआई करते हैं तो उसमें कम से कम 12 केजी प्रति एकड़, मतलब 30 से 40 केजी मैक्सिमम, 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें धान का ज़रूरत पड़ता है। जो हल्की धान है, जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उन्नत किस्म है, इस तकनीक में हमें हाइब्रिड का उपयोग करने से हम लोग किसानों को इसमें नहीं बताते हैं, इसमें कोई अच्छी वैरायटी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उन्नत किस्म है, उसी का उपयोग करते हैं। हल्की धान जो 100 से 110 दिन की वैरायटी है, उसी धान का हम लोग चयन करते हैं।
1: अगर किस्म की हम बात करें तो कौन कौन सी किस्म हो सकती हैं
0: धान के? भी उन्नत किस्म में बहुत सी किस्में हैं जो कि किसान इस तकनीक में उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा जो CR 214 जो वैरायटी है इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। CR 804 है जो कि अभी लेटेस्ट 2024 में संस्थान ICR इंस्टीट्यूट संस्थान से रिलीज हुई है, CR 804, CR 214, जिसका जो परिपक्व धान का परिपक्व या तैयार होने की जो अवधि है लगभग 115 दिन है, और उपज भी 45 से लेके 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसानों को मिल जाती है। इसके अलावा भी और सी वैरायटी है, और भी पूसा समस्तीपुर RAU जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर में, उनके द्वारा भी एक वैरायटी सबौर कुंवर धान का रिलीज हुआ है जो झारखंड के किसानों के लिए भी उपयुक्त माना गया है। CR 807 धान है, सहभागी एक धान है जो इस तकनीक में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी बिरसा विकास 107, 108 धान, अंजलि घोड़ा और सदाबहार, इस तरह की बहुत सी वैरायटी है जिसका उपयोग हम लोग धान की सीधी बुआई में कर सकते हैं।
1: जैसा कि किसान भाई खाद का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से खाद और किस तरह की खाद देना चाहिए इसमें?
0: इसमें जिस समय खेत तैयार करते हैं जिसको हम लोग जिसको बोलते हैं खेत को तैयार करते समय बेसल जो डोज होता है उसका हम लोग DAP एट द रेट ऑफ 50 kg प्रति एकड़, या नहीं तो NPK 12 32 16 75 kg प्रति हेक्टेयर इसमें हम लोग खाद का उपयोग बेसल डोज के रूप में करते हैं। और धान का बुआई चूँकि इस विधि में लाइन में होता है, खरपतवार भी हम लोग इसमें आसानी से निकालते हैं। अगर चाहें किसान तो कृषि यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, कोनो वीडर। परंपरागत तकनीक में धान

0: किसान बिना लाइन के लगाते हैं, जिसमें खरपतवार की समस्या वो हाथ से करते हैं। महिलाएं खासकर इसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसका काफ़ी समय और खर्च और उनको थकावट भी होती है। तो अगर लाइन में धान की बुआई होती है मशीन से, तो उन्नत कृषि यंत्र पैडी वीडर, जिसको हम लोग कोनो वीडर के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी अच्छी तकनीक है लाइन के बीच में खरपतवार निकालने का, उसका भी उपयोग किसान कर सकते हैं। तो उपज में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और उसका जो खर्च है खरपतवार निकालने का, उसमें भी कम समय लगेगा और खर्च भी कम होगा और उपज भी कम से कम 1.5 मतलब एक से डेढ़ गुना उपज में भी वृद्धि होती है और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है।
1: शर्मा जी, आज हम बात कर रहे हैं धान की सीधी बुआई के बारे में। अंत में हमारे किसान भाई को सावधानी बता दें, किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए?
0: किसान भाई को इस तकनीक को अडॉप्ट करने के लिए कुछ सावधानी भी इसमें लेनी पड़ती है। जैसे आप सीड ड्रिल मशीन का उपयोग, जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करने से पहले, धान की सीधी बुआई करने से पहले धान का जो मशीन का कैलिब्रेशन है, जो कितना बीज और खाद उसमें गिर रहा है, उसका कैलिब्रेशन को भी ध्यान में रखना होता है कि ज़्यादा बीज नहीं गिर जाए, ज़्यादा खाद नहीं गिर जाए। तो मशीन का कैलिब्रेशन, जिसको अंशांकन भी बोलते हैं, कैलिब्रेशन ज़रूरी है। मशीन को कैलिब्रेट करके और उसमें खाद और बीज अगर हम लोग डालते हैं तो सही मात्रा में। कभी कभी किसान से कुछ तकनीकी भूल हो जाती है तो किसानों को ज़्यादा बीज भी गिर जाता है, कभी कभी खाद भी ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए मशीन का कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है, जो सावधानी किसानों को लेनी है।
1: तो शर्मा जी, आप धान की सीधी बुआई के बारे में अच्छी से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सभी किसान भाइयों को, नमस्कार, जोहार।
1: किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जोहार।
2: तो हमरे जानकारी करत रही धान कर सीधा बुआई कर बारे में, बतात रहे श्री ओपी शर्मा और इनकर से बतियाल है मनोज कुमार।
3: एकदम, और नगद जानकारी रहे बड़ी कुछ हमरे नवा जान ली, कैसे धान कर हमरे सीधा बुआई कर सकेला।
2: हाँ।
3: और धान कर उपज के बढ़ाई सकेला। तो इकर पाछे संध्या बहन गीत गोविंद होए के चाहिए।
2: एगो कृषि गीत सुनीला भाई, इग्नेश कुमार और संगीमन कर गावल है।
3: चलो तब सुन लेवीला।

0: तो भाई अखन हमरे एगो कृषि गीत सुनली इग्नेस कुमार संगी मनकर गावल।
1: हाँ गीत तो बहुत बढ़िया रहे नी
0: एकदम।
1: अब भाई अब आगे हमरे कर किसान भाई हैं नई उम्र की नई फसल में। आज हमरे मन किसान भाई रोहन कुमार महतो से गोठियाल गोइठ के सुनब जे बैगन कर खेती कर बारे में बतावें। गोठिया हैं अरविंद कुमार मिश्रा।
0: चलू तब सुन ले विला।
2: कार्यक्रम सुनवैया सौ भाई बहिन मन के हमर बटले बहुत बहुत जोहार। भाई बहिन मन आसरा करेला हाल समाचार और मनकर बहुत बढ़िया हुए। देखो रोज दिना हमरे मन नवा नवा किसान भाई मन से भेंट करवाते रहिला रोर मनकर। उमनकर अनुभव के जानिला कानियर खेती करेना खेती बाड़ी करके कैसन उमनकर जीविका चले के लाई है सारा कुछ हमरे मन जानिला। बहुत किसान मन है नी कि नवा नवा तकनीक के अपनात हैं और जैम के खेती बाड़ी कर काम के करत हैं। तो उमन से भी हमरे मन के जाने के सीखे कर मौका लागेला। तो आइज हमरे मन अपन स्टूडियो में एक ठो नौजवान किसान भाई के बुलाही। ई देखे के लिए नौजवान हैं लेकिन इनका ठीना देखब नी खेती बाड़ी कर बहुत अनुभव है। कारण है कि इनकर से चलते फूलते हम इनकर से भेंट कर रही इनकर खेती बाड़ी कर जे तरीका है से कि हम ठावे देख रही। तो इनके आज हमरे मन आमंत्रित कर रही चलू इनकर से हमरे मन भेंट करीला और इनकर जे खेती बाड़ी कर तौर तरीका है से कि हमरे मन जाने कर प्रयास करब। तो सबसे पहले तो इनकर हमरे मन स्वागत करीला। भाई जोहार।
3: जोहार।
2: नाम का होला किसान भाई रोर?
3: हमर नाम रोहन कुमार महतो है के।
2: रोहन भाई कहाँ कर रहे वाला हीरो रे?
3: हमर गांव करांजी थाना बेड़ो जिला रांची है के।
2: बहुत बढ़िया रोहन भाई, बेड़ो थाना कर और रांची जिला कर होया ही। और देखो दियो ठाव जे है नी हमरे कर रांची जिला कर बात के कहिलो चाहे बेड़ो ब्लॉक कर बात के कहिलो, हुआ कर किसान मन बड़ा जबरदस्त एकदम अलग अलग

0: तरह का खेती करे ना और जैम के खेती करे ना, कैसन
1: खेती? तो वहाँ सब प्रकार कर खेती होवेला, और खेती में हमरे इतना मतलब व्यवस्था के साथ करी ला कि अपन मन तन धन सब लगाए देवी ला दादा खेती में।
0: रोहन हम तो जाए के देख रहे रो खेत में, जैसन रो रे बाप और बेटा जो यूँ मिल के खेती करत रहे, हमके भी बड़ा बेस लाग लग रो मन के देख के। रोहन भाई पढ़े कहाँ तक पार ली रो रे?
1: हमर पढ़ाई लिखाई इंटर तक भे है, और यह खेती गृहस्थी में फिर इंटर कर बाद उतरली और एखन जोर शोर से खेती करत ही दादा।
0: तो खेती करते करते कितना साल का रो ठीना अनुभव भेजा है?
1: खेती देखू हमरे कर बाप पुरखा से तो करते आवत हैं, तो हमरो छोटे बेरा रही से है बेर से कोड़ा खोपा जे भी अपन बाप मने करे ना सेके करते करते हमरे सीखली, और एखन कर जे तकनीक के मतलब व्यवस्था है सेकर से जानकारी भी हमरे के बहुत तरह से अच्छा मिले लाएगे।
0: एकदम सही कहली। खेत रोर अपन कितना है?
1: देखू खेत तो अपन ज्यादा नखे, लेकिन दूसरा मनकर खेत में भी हमरे जोर शोर से ज्यादा मात्रा में खेती लगाई ले।
0: का खेती करी ला? कैसन मने दोन खेत है कि डाड़ खेत है, कैसन है?
1: देखू हमरे कर उजक जे मिट्टी जे है से बहुत तो मतलब उपजाऊ मिट्टी है, उके कहे ना नगड़ा माटी। अब नगड़ा माटी में तो देखू जखन सूख जाएला से बरा तो टंग टंग बुझाएला, लेकिन पानी तनी कुन पड़ जाएला नी तो पूरा वो बालू जैसन रेत बन के बहे लागेला। सेकर में वो खेती करे ले बहुत उपजाऊ मिट्टी होवे ला दादा, और हमरे कैसनो चीज के हुआ लगाई लनी तो बहुत सुंदर होवेला। जैसे कि गेहूं के भी अगर एक बेर बुन देली, चना के बुन देली और एक बेर छीट देली, और ऊपर वाला भगवान एक आध बेर बरखा कर देलक, बारिश आ गेलक, तो हमरे खाली ऊपर में दवाई कर यूज करी ला दादा, और हमरे कर फसल पूरा बहुत सुंदर उपज हो जाएला।
0: बहुत नगद बहुत बढ़िया से रोरे बताती अपन खेती बाड़ी कर तौर तरीका के। रोहन भाई एखन कर समय में खास करके देखो, हालांकि बीच बीच में बरखा पानी आते है, लेकिन गर्मा कर जे खेती होएला सेकर में पानी कर बहुत दरकार होएला, तो रोमन गर्मा खेती में कैसे कैसे काका करी ला रेखन रो खेत में का लागल है?
1: देखू गर्मी खेती में तो खैर पटवन कर दिक्कत होवेला, और दवाई बीरो भी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए गर्मी कर कारण तो दवाई भी काम नहीं करेला। लेकिन मेन चीज है कि गर्मी कर पानी, पानी अगर रह जाए नी और दवाई तनिकुन कम भी पड़ी तो खेती हो जाएला। और एखन हमरे कर खेत में जैसे खीरा बैगन एखन पछात वाला बीन भी लागल है, और बैगन एखन ज्यादा मात्रा में है जे कि बरसात तक हमरे उके बैगन में अच्छा मुनाफा हर साल पाविला। तो एखन जे है एक फसल तो निकल गेलक हमरे कर पहले है मटर और चना, लेकिन एखन बैगन जे है हमरे कर नी वो हमरे कर लास्ट फसल बचल है। वो बरसात तक हमरे कर जब तक पानी नहीं भरी, जब तक रोपा नहीं रोपाई, तब तक हुआ से हमरे मुनाफा निकलाते रह। सेकर लागिन हमरे जोर शोर से एखन भाटा के मेहनत करे लाएगी, और भाटा में एखन फर फूल एकदम आ जात।
0: अब तो ये भाटा कर बात करत थी से जे हमरे मन पारंपरिक खेती करत रही से मुद का है कि जे आधुनिक वाला है से के लगा ही रोरे?
1: देखू एखन हमरे जे लगा ही नी तो दोइन कर खेत में लगा ही दादा। अब उकर में ऐसा हो नी लगभग हमरे उकर में साल भर में चार फसल निकलाई कर प्रयास करी ला। जैसे कि एक बार चना निकला ले ली, ठीक है, उकर बादे चना उखड़ा ली, उकर बादे एखन बैगन लगाए दे ही, वो फिर एखन धान खेती लगा बैगन कर बाद में, तो लगभग कुछ कुछ करते हुए चार फसल तो मुश्किल हो जाएला, लेकिन तीन फसल हमरे उकर में कर लेवीला। तो हमरे कर उजक जगह कर तनिकुन कमी है, और किसान थोड़ा सा ज्यादा है, और सबकर मुख्य पेशा है के खेती। तो हमरे कम खेत में ज्यादा उपज करे कर प्रयास करी ला, और उपजाऊ मिट्टी कर कारण में हमरे एक एक खेत में तीन फसल कर लेवी।
0: अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये नवा तकनीक भी है कि हमरे मन अधिक से अधिक ऐसे फसल चक्र के अपनाओ। हाँ। जेकर से हमरे मन के ज्यादा मुनाफा होवे, और संगे संगे रोरे जे तौर तरीका खेत में अपना ही सेकर से हमके लागेल मुनाफा बगरा होवत है।
1: बगरा होवे ला, लेकिन देखू कभी कभार एक मौसम कर अभाव से खेती नुकसान भी हो जाएला, तो कभी मुनाफा होवे ला कभी नहीं होवे ला दादा। लेकिन हम इनका पेशा है के खेती तो हमरे के करे के है, उतना नुकसान और उतना फायदा के नहीं देखी ला, लेकिन उम्मीद करी ला कि हमरे के फायदा हो, उकर लिए ही हमरे उतना जोर शोर से मेहनत करी ला।
0: एकदम बहुत बढ़िया है, कारण है कि किसान अगर खेती नहीं करी तो हमरे कर देश कैसे चली। रोहन भाई रोरे खेती कर जे तैयारी है से कैसे करीला, जे आधुनिक खेती है, अब तो कहल भी जाला कि अगर उनके अपन आय के दुगुना करे है तो आधुनिक खेती बटे रोके उतरे पड़ी, तो रोर

0: तरीका कैसे है खेती करे कर, खेत कर तैयारी सबसे पहले फसल लगाए से पहले कैसे करीला?
1: देखो खेत के तैयार करे पड़ेला बहुत सुंदर से। पहले तो ढेला उला हो जात रहे बहुत ज़्यादा, पहले तो ढेल फोरा पासत रहे, लेकिन एखन तकनीकी युग कहल जाए तो हमरे कर ट्रैक्टर है नहीं, ऊकर से हमरे कर खेत कर जोताई बहुत सुंदर से होवेला।
0: हाँ।
1: और बहुत तो मतलब अच्छा से खेत तैयार हो जाएला। पहले कांटा हर से जोतवाइल, ऊकर बाद चाइना हर से कर से मतलब का है कि खेत बहुत अच्छा तरीका से तैयार हो जाएला। ऊकर बादे हमरे ऊकर में दर सोटीला, ऊकर बादे जैसन मन करे पड़ेला उसन खेती हमरे दर बनाए के करीला और बहुत सुंदर से करीला दादा।
0: बहुत बढ़िया। और देखो रोहन भाई, रोड से बतिया के लिए तो बहुत कुछ है और समय कुछ कम है, लेकिन से अगला बार रोड के हमरे मन हकाब नहीं तो रोड और भी जो अनुभव है से कि हमरे मन जाने कर कोशिश करब। लेकिन जाते जाते रोरे नौजवान किसान भाई बहन मन के का संदेश देवे खोजिला?
1: देखो नौजवान किसान मन के हम यह संदेश देवे चाहब कि देखो मेहनत जे करे है नी अपन लगन से करे है। जैसे कि मान के चलो एखन गर्मी कर खेती लगा ही और खेती के हम के पानी कर जरूरत है और उके हम सोचब कि नहीं दो दिन बादे पटाब, तो देखो टेम्परेचर कर कारण से खेती एक रौद में एक दिन में नुकसान हो जाए दादा। से ले एखन कर जे भी खेती करवैया हमार नवयुवक भाई मने हैं से मन के यह कहे चाहब कि खेती में भी रोर के समय देवे पड़ी और दिमाग से खेती करे पड़ी और शाम सुबह खेती के देखते रहे पड़ी दादा, और उकर में अपन ध्यान दे के उके फसल के उपज बनाए पड़ी, तभे जाए के रौरे मने कुछ कमाए सकिएला। सेल उकर में खेती में बिना ध्यान कर तो नहीं होवी, रौरे मने भी हमेशा खेती के ध्यान देते रहू और समय से पानी समय से दवाई और उके सब कुछ समय से देवे। जैसन एगो बालक छुआ के पोसे ले करे चाही करे पड़ेला, उसने खेती के भी हमरे के एक पौधा तैयार करे ले करे पड़ेला।
0: बहुत बढ़िया रोहन भाई, रोरे अपन खेती बाड़ी कर बारे में अपन अनुभव कर बारे में बहुत बढ़िया से बता ली। लगे तब रोर से फिर से हमरे मन कर भेंट घाट हुई तो हमरे मन और भी गोठियाब बतियाब रोर से, रोरे अपन समय के दिली और बहुत बढ़िया बात के बता ली से कर ले रुके। बहुत बहुत धन्यवाद, लगे तब जोहार।
1: ठीक है दादा, सबके जोहार करत है।
2: तो भाई किसान भाई रोहन कुमार महतो से करल गोइट कर संगे है किसानवाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताए देवीला। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: एक धाव फिर से सुनवैया भाई बहन मनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
1: और मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: तो मनीष भाई बताओ का हाल चाल है।
1: मोर हाल समाचार तो नगदे नगद है संध्या बहन, और बताओ राउर कैसन हाल समाचार है।
0: हमारो हाल समाचार बढ़िया है भाई, और हमरे आसरा करेला कि हमरे घर सुनवैया भाई बहन मनकर हाल चाल हो नगद हुई है नी
1: एकदम। और संध्या बहन रौरे नगद कहली तो देखो कई गो घर परिवार है जेकर मैसन हमरे मन कर बुजुर्ग आदमी मन है जे एकले रहना और एकलापन के महसूस करे ना।
0: हाँ भाई अखन देखो बेरा बदल गया, सब अपन काम काज कर चलते चाहे कोनो पढ़ाई लिखाई चलते मैंने घर से दूर रहे ना और एकला रहे ना, तो पहले कर बेरा रहे कि सब एक ठिना रहत रहे।
1: हाँ, हाँ, पूरा भरल पूरल परिवार रहत रहे,
0: का सुख होलक का दुख होलक कोनो पते नहीं चलत रहे, सब एक ठिना मैंने मिल बाँट के बीतत रहे समय, तो पता नहीं चलत रहे। अखन अब सब अपन अपन काम काज कर चलते हीने हुने हो जाए ना, तो घर कर जे बड़ बुजुर्ग मन रहे ना से मन कखनो कखन घर एकला रह जाए ना
1: एकदम। और एकला रहना तो एकला होले होल पाछे कई चीज के सोचे ना, कई गो जे विचार है जे नेगेटिव विचार है वो आवेल मन में, तो सन में एकलापन कर महसूस होला मन के। और कई बार कई गो घर में तो एकले रहते रहते उबियो जाए ना आदमी मन।
0: हाँ, अरे बगरा इसने में बीमार हो ही जाए ना है नी।
1: हाँ हाँ और हॉस्पिटल जाए खेला और खर्चा बर्चा बढ़ जाएला, तो सेले भाई बहन मन हमरे के प्रयास करे के चाहिए कि घर में जो बड़ बुजुर्ग है उनके टाइम देवे के, उनकर से गोठियाए के, और जो छुआ है मन है उ मन के बड़ बुजुर्ग से खेले देवे के। काले कि बड़ बुजुर्ग मन जग जो जीवन का अनुभव है
0: हाँ हाँ
1: बहुत बगरा है, और उ मन जग ऐसा ढेर ज्ञान है जो हमरे मन के देवे, तो हमरे मन आगे जीवन में उके अपनाई के ढेर आगे बढ़ सकेला।
0: हाँ और छुआ मन के भी बढ़िया संस्कार भेटायला है नी
1: एकदम। और संस्कार कहली तो जो संस्कार कर बात है वो हमरे मन के बड़े बुजुर्ग सिखाए ना संस्कार के छुए परिया में, और छुए परिया कर जो संस्कार है वो हमेशा पूरा जीवन भर रहे
0: जिंदगी भर रही जाएला
1: एकदम। तो भाई बहन मन देखो हमरे मन के गीत गोविंद बठू बढ़े के चाहिए और ध्यान देवे के चाहिए, काले के गीत गोविंद से हूँ ढेर एकलापन दूर होएला। तो चलो एगो लोकगीत सुन लेला, पंच परगनिया लोकगीत है सुभाष कोइरी और संगी मनकर गावल।
0: हाँ चलो सुना थी।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तो संध्या बहन, पंच परगनिया लोकगीत तो सुभाष कोइरी कर बड़ा नगद लागल।
4: अब एगो हिंदी वार्ता सुनेला है नी।
3: हाँ हाँ।
4: झारखंड कर खनिज संपदा और झारखंड कर अर्थव्यवस्था ऊपर इकर का प्रभाव है, इकर बारे बताते हैं करम सिंह मुंडा। हाँ
3: चलो।
5: झारखंड को अक्सर कहा जाता है कि यह भारत का खनिज भंडार है। यहाँ भारत के कुल कोयले का लगभग 27 से 29 प्रतिशत तक मिलता है। लौह अयस्क के बड़े भंडार यहाँ स्थित हैं। यह देश के कुल भंडार का लगभग 26 प्रतिशत है। मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, यूरेनियम और सोना जैसे खनिज भी इस राज्य में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण भारत में उपलब्ध खनिज भंडार का लगभग 40 प्रतिशत हमारे झारखंड की धरती के नीचे मिलता है। इन खनिजों के कारण झारखंड देश का एक बड़ा औद्योगिक हब बन गया है। यहाँ स्टील, एल्यूमिनियम, ऊर्जा और अन्य उद्योगों का विकास हुआ है। आइए आज हम जानेंगे कि इन खनिजों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं और भविष्य में इन्हें कैसे सतत उपयोग में लाया जा सकता है। यह जानकर आपको आश्चर्य और खुशी भी होगी कि झारखंड की भूमि का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खनिज संपदा से भरा हुआ है। यही कारण है कि राज्य में बड़े औद्योगिक केंद्र और ऊर्जा उत्पादन स्थल विकसित हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का लगभग 40 प्रतिशत स्टील उत्पादन झारखंड में आधारित स्टील प्लांटों से होता है। इसी वजह से यह राज्य देश की औद्योगिक

नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने बोकारो स्थित सेल, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील, रांची के HEC आदि उद्योगों और कारखानों का नाम अवश्य सुना होगा। ये सभी स्टील आधारित उद्योग हैं। भारी मशीन, इंजन और आधारभूत संरचनाओं में उपयोग में आने वाले स्टील के सामान बनाने वाले ये देश के प्रमुख उद्यम हैं। पश्चिमी सिंहभूम राज्य का शीर्ष खनन जिला है। यहाँ नोआमुंडी, गुआ, मनोहरपुर, झिंकपानी सबसे महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं। नोआमुंडी की खदानें देश की सबसे बेहतरीन हेमेटाइट अयस्क खानों में गिनी जाती हैं। झारखंड भारत का अग्रणी कोयला उत्पादक और भंडार वाला राज्य है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 27-29% तक मौजूद है। यह राज्य न केवल अपनी खदानों से करोड़ों टन ईंधन निकालता है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के भारी उद्योगों को भी ऊर्जा प्रदान करता है। झारखंड में कोयले का खनन मुख्य रूप से दामोदर घाटी बेसिन में केंद्रित है। मैं यहाँ राज्य के प्रमुख कोयला स्रोत और खदानों का जिक्र करना चाहूँगा। झरिया धनबाद, इसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और यहाँ कोकिंग कोल, जो कि उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, का विशाल भंडार है। बोकारो, यह इस्पात संयंत्रों जैसे बोकारो स्टील प्लांट के लिए कोकिंग कोल का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी एवं दक्षिणी कर्णपुरा, हजारीबाग और रांची जिले में फैला यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है। रामगढ़, यहाँ से उच्च ग्रेड का कोयला निकाला जाता है। गिरिडीह, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले भाप कोयले स्टीम कोल के भंडार उपलब्ध हैं। राजमहल कोयला क्षेत्र, साहिबगंज और गोड्डा क्षेत्र में स्थित यह खदानें मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों थर्मल पावर को कोयला आपूर्ति करती हैं। पकरी बरवाड़ी, हजारीबाग जिले में स्थित यह महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक NTPC द्वारा संचालित प्रमुख कोयला स्रोतों में से एक है। बॉक्साइट अयस्क झारखंड में उपलब्ध एक प्रमुख खनिज है, जिससे हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होता है। यह मुख्यतः लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिलों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से परिवहन, निर्माण, पैकेजिंग और विद्युत क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आपको यह तो अवश्य ही पता होगा कि हवाई जहाज का मुख्य ढांचा एल्यूमिनियम अलॉय का ही बना होता है। भारत के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग 9% है। झारखंड की प्रमुख एल्यूमिनियम रिफाइनरी आदित्य बिरला समूह द्वारा रांची जिले के मुरी में संचालित की जाती है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज मुरी भारत का पहला एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसके अलावा खनिज संपदा से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी लाभ मिला है। यह रोजगार सृजन और राज्य के राजस्व में वृद्धि का एक बड़ा स्रोत है। अब हम खनिज संपदा का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। खनिज उद्योग ने झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। प्रत्यक्ष रोजगार खनन और उद्योग क्षेत्र में मिलता है और अप्रत्यक्ष रोजगार परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जमशेदपुर और रांची के आसपास की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को खनिज उद्योग ने बहुत मजबूती दी है। स्टील और ऊर्जा उद्योगों में हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और इससे आसपास के व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। आप सोचिए, आपके शहर या गांव में खनिज उद्योग ने कितना विकास किया है। क्या नज़दीकी सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है? हाँ, अवश्य हुआ है। औद्योगिक और खनन क्षेत्रों के आसपास हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज, खेल परिसर आदि का विकास सामान्यतः देखा जा सकता है। खनिज आधारित उद्योग राज्य के राजस्व और यहाँ आने वाले निवेश का प्रमुख स्रोत हैं। खनिज उद्योग राज्य को महत्वपूर्ण राजस्व देता है। खनिज रॉयल्टी और करों से हर साल अरबों रुपये की आय होती है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोयला और स्टील उद्योग से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों में होता है। इससे स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। यदि खनिज संपदा का हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वहीं इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी साथ साथ चलते हैं। खनिज उद्योग के कारण वनों की

0: सिंचाई, जल प्रदूषण, विस्थापन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसके अलावा आर्थिक असंतुलन भी देखा गया है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक विकसित हुए हैं जबकि कुछ पिछड़े हैं। इसलिए खनिज उद्योग के साथ जिम्मेदारी और सतत विकास की ज़रूरत है और इसके लिए हमें खनिज संपदा का सतत उपयोग और भविष्य की दिशा भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तय करनी होगी। खनिजों का सतत और जिम्मेदार उपयोग अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक माइनिंग तकनीक और पर्यावरण सहायक यानी इको फ्रेंडली प्रथाओं को अपनाना होगा। स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन की योजनाएं चलानी होंगी। इससे खनिज उद्योग का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा। छोटे उद्योगों और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्य का विकास अधिक समावेशी बनेगा। यानी खनिज संपदा का लाभ सिर्फ उद्योग और सरकार तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि आम जनता तक पहुंचना चाहिए। झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। यह रोजगार, उद्योग और राजस्व का प्रमुख स्रोत है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। खनिजों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग ही राज्य को समृद्ध, खुशहाल और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकता है। यदि हम खनिज संपदा का सही उपयोग करें तो झारखंड न केवल भारत का एक बड़ा खनिज हब बनेगा बल्कि एक विकसित और खुशहाल राज्य भी बन सकता है। और तभी हम गर्व के साथ कह सकेंगे, हाय रे हमर सोनार झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड।
1: तो भाई बहन मन, एखन हमारे झारखंड कर जे खनिज संपदा है और झारखंड कर अर्थव्यवस्था पर उकर का प्रभाव है, कर बारे में जानकारी करत रही बतात रहे करम सिंह मुंडा।
2: हाँ भाई, तो जानकारी होलक, चलो कटिकन बेरा बाँचल है तो एक ठो गीत और सुन ले वेला है नी।
1: हाँ हाँ, तो चलो ये गीत है
2: कुरमाली में दीनबंधु महतो और संगीमन कर गावल है,
1: तो चलो तब सुन ले वेला।

0: सुनली कुरमाली लोकगीत दिन बंधु महतो और संगी मनकर गावल रहे। और मनीष भाई देखो इकरे संगे हमरे कर हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बता देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर
1: इकरे संगे मनीष भाई
0: और संध्या बहन के विदा देव
1: जोहार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति

0: का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 2 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू किया गया है।
1: हम जब से इस राज्य में काम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब तो इंटर तो पढ़ाई अच्छी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में, सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा।
2: 30 जून से 29 जुलाई तक है, इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे, उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक, उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे।
0: राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली से ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
3: पेसा अधिनियम को पारित किया गया, इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। जो पारंपरिक ग्राम सभा के हेड्स होंगे उन लोगों की नियुक्ति वो जारी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए यह बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सके इसके लिए सभी लोग लगे हुए।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय

0: कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: आज सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
0: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा और जिला प्रभारी चौतो उरांव विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज उन्हें विधानसभा में सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती।
3: हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है। जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है, आज भी वैसे मेधावी हर जगह उपस्थित। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना।
0: हॉकी इंडिया ने 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ी आशीष तानीपुरती और प्रेमचंद सोई को जगह मिली है। उनके चयन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग ने पूरी टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेशा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के 2 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करीब 107 करोड़ की लागत से हजारीबाग शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया,
2: उसको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ से लेकर के नगवा तक मतलब जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक अभी किया जा रहा है, 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है।
1: हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी बैजनाथ कामती बताते हैं,
3: पूरे देश में 600 जिलों में घूम घूम कर वहाँ के जो लोकल प्रशासन से मिलकर एक चलाते हैं, उसी तत्वाधान में ये लोग आज शनिवार से ही यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट मोड पर ये कार्यक्रम था, उसी में हमारा परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे रोड पर चले, क्या नियमों का पालन करें, यही सब की जानकारी लोगों को दी गई और फाइन भी काटा गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में जहाँ लोग जीरो हेलमेट पहनते थे, अब परिवर्तन आ रहा है, आने वाले समय में 100% लोग हेलमेट जरूर पहने।
1: का सबसे गर्म बरकट्ठा सूर्यकुंड को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण किया है। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बताया,
4: सूर्यकुंड को अभी जिस जिला परिषद के द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसमें लगभग लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ के मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ बातें तय हुई है, जिसमें हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे कार्यों को कराया जाना है ताकि और पर्यटक आ सके और पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर वो अपनी जगह बना पाए। इसके अलावा पाताल लोक धाम का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पर 24/7 बहुत ही अच्छा पानी आता है कि सभी लोग यहाँ से पानी पीते हैं और इस पानी की अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है। हम लोगों के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को भी संज्ञान में लाया गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को यहाँ पर ठीक कराया जाएगा, स्नान घाट बनाया जाएगा, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के आह्वान का देश में तत्काल और व्यापक असर दिखा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा चार पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना जाना शुरू किए हैं। इनका कहना है
5: कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं पेट्रोल सोना आदि आदि, तो मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वाहन से चलूं, हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे साथ चलते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी आज से बाइक से ही कर रहा हूँ और काले हम इसी से आ रहे हैं। राष्ट्र बचाने के लिए तेल नहीं, राष्ट्र रहेगा तो मेरा हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, मैं महापौर रहूंगा, तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबों को, हर भारतवासियों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी इन्होंने देश हित में लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने उनकी अपील का स्वागत किया है। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे संथाली भाषा में। प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आदि मौज सेरेंज बन आजम के या आर नेतो दोहा मिटंग गालोच बन आजमा नोवारे ना साताम दो करना कि नापाय आगाम लगीन चेत लगा मेहनत हुई आर नोवा दो मौज ते ले या बन करना है प्रदीप मुर्मू देला बन आजम लगे।
4: आबो जोतो कोवा जीवन रे मेहनत मिटंग आदि लगती यान जिनिस काना, बेगोर मेहनत ते दो नापाय आगाम बांग न्यामो आ। दोसार साबात तेबोन मेन दाड़ेआ जे मिटांग खुड़िया होड़ा आगाम दो नापाय बांग हुयु तया, मेन खान मिटांग होर जहाय दो लागले मेहनत एदा सरी गे उनिया जीवन रिया आगाम दो नापायो तया। मेहनत नापाय आगाम लगीत अडी मोहतान जिनिस काना आर नागाम दो नुआ आयमा धावे दबी शबित आकादाय। वैज्ञानिक एडिशन गोटा सिंह आया प्रयोगशाला रे कमीए ताहेना आर दुदड़ू में खान दो पतोप सिथन काते ए गीति जीर कान ताहेनाए। नुंका गे महात्मा गांधी दो आबोआ भारत दिशम अंग्रेज ठेन खोन फुर्गल लगीत सिंह निंदय मेहनत लेदा। आबो बन बाड़ाय दाड़ेआ काना जे जहाय होड़ जहाना लगीत के लागले मेहनत एदा उनी दो ओना रिया नापाय कुड़ई गे न्याम आकादा। मेढ़हत लेका बन झलका आ मेहनत लेखान आर खुड़िया लेन खान बन चीती आ। मेहनत लेखान आबोआ जीवन लगीत नापाय आगाम बन बेनाव गढ़ोन दाड़िया आ। मेहनत दो खटी गे नापाय आगाम कुड़ई रूपते एमाबुना नुआ को कथा सरी लगीत मेहनत अडी लगती गया। जुदी आबो दामान ओक्ते बोन बर्बाद एदा एन खान ओक्तो हों आबोई बर्बाद बुना। मेहनत काते जहाय गे आया नापाय आगामे गढ़ोन दाड़े आ। मेहनतिये होड़ बुसु ओड़ा रेको जानामेना मेन खान मोहल रेको बोंगा तलायना। नुआ को कथा तेबोन बाड़ाय दाड़े काना जे मेहनत रिया सागार गड़ी रे दे काते नापाय आगाम ठेन बोन सेटेर दाड़े आ। जहां तीन रे आम मेहनत तेम एथोप आ उन रेगे आमा जीवन रे बनदल एम अइकवा। आम अडी साधाव वेम बेनाआ आर आमा कमी बाबत अडी कुरुमुटु ताहेन तामा। जीवन रे बेझा आ हुदिस अडी गे लगती आ चेदा से ओना तायनोम गे ठीक आ। आम दो ओका डाहार पांजा होयो तामा आर ओना डाहार रे दो चेत लेका ताड़ाम होयो आ आर तीना ओक्ते रे ओना बेझा दो तुन जोसो आ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ए मेन लेदा जे पटवा को दो जीवन रे सारा घड़ी भेजा आर कुकमू को हुदिस मा आर ओना कुकमू पूरुन लगीत लागले मेहनत लगती गया। चेदा से जुदी पटवा गिद्रा तिहिन को मेहनत लेन खान उनको वा दाराय कान आगाम नापायो आ। जुदी पटवा जीवन रे खुड़िया जीरव लेन खान दाराय कान आगाम दो न्यूत गे ताहेना दुख कष्टते। पटवा जीवन दो नुआ इया तेगे अडी दामान को मेता आ चेदा जे नुआ ओक्ते रे जुदी गिद्र को ओलो पढ़ा रे को मेहनत लेखान उनको वा आगाम दो सुलू को आ। जुदी सुही ओक्ते रे पटवा गिद्र को आको वा कमी बांग को पुरुन लेखान आदो उनको ठेन पढ़ा कमी जारवा इदी आ। जुदी गिद्र को पटवा जीवन रे बोकोल जीरव आको एन खान दाराय कान ओक्ते रे अडिगान मेहनत हुयु तकवा। जुदी गिद्र को पटवा जीवन रेगे मेहनत लेखान दाराय कान आगाम जीवन रे सुख सावते समाज रे मान सम्मान होको न्यामा। मेन खान नेतार पटवा कोमा को खुड़िया कना नुआ इयते उनकोवा आगाम बड़ीजो कना। मोबाइल कंप्यूटर एमान को व्यवहार रे जस्ती ओक्ते पटवा को बांग बर्बाद लगती या। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱽᱞᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ 15 ᱠᱷᱚᱱ 30 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱱᱜ ᱵᱤᱥᱤ ᱡᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱟᱱᱰᱮᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱢᱟᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱪᱩᱴᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱩᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱠᱟᱥᱛᱟᱜ ᱟᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱡᱮᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱜᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱲᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱰᱮᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟᱭᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱜ ᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱥᱛᱟᱣ
5: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱛᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ

मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेकर हाजिर हूँ सुरों शब्दों यादों से सजी ये खूबसूरत शाम। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में संगीत ही वो साथी है जो थके हुए मन को सुकून देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा में लेते हैं एक छोटा सा विराम, विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: राम के बाद आप सबों का फिर से हाजिर है कार्यक्रम रजनीगंधा में। दिल से निकली धुनों का असर कम नहीं होता और अच्छा संगीत कभी भी पुराना नहीं होता। तो सुनते हैं ये अगली पेशकश।

0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा। रजनीकंधा में लेते हैं एक और छोटा सा विराम, फिर आपके बाद हाजिर होते हैं कार्यक्रम रजनीकंधा के साथ।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रजनीकंधा में। दोस्तों, अगर दिल में खुशी हो तो हर मौसम सुहाना लगता है, और साथ में अगर अच्छे गीत हों तो सफर भी आसान हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की भाषा भी है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, तो कभी पुराने दिनों से मिला देता है। कुछ गीत महज गीत नहीं होते, वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पन्ने होते हैं।

महकते सुर चहकते बोल और यादों की रवानी, यही तो है रजनीगंधा की असली कहानी। सुनिए ये आज के रजनीगंधा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

तो दोस्तों, अब रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मिलते रहेंगे सुरों में, बातों में, एहसासों में, जब तक धड़कन है संगीत रहेगा सांसों में। तो चलिए, इस कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
4: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए ओसीआई कार्ड की पात्रता चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलेट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढर जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डच सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
2: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
5: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहां के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
6: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
2: पांच देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
1: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की पांच देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
7: सुर्खियों में
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से

0: की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वे को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्स फ्रेड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections.

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासरा मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीराजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीराजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीराजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और

0: वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमेरिका फितरी शराकत दार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में एमएसएमई के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन एलपीजी तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल ने मुतासरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रابطے में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमलावरी और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नजर भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तहकम करने और लाखों

0: लाखों की किसानों की जिंदगी में मुसबत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और जरई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के आवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतेहाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारें। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमे मौसम

0: IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से इख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरक के खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। ये प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसीतर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Countrywide. नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
3: ये हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिपेल करता है।
2: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
3: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो

0: साल बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री, तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली हरियाणा पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया कर्नाटक कोस्टल एरिया वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
0: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें चार कलर जैसे कि ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये चार कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारे जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे, दिल्ली में क्या है आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब कि एक दिन के अंदर आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक टूल भी हम उसमें लगा के उसे हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
0: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड देखो, ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है, दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा।

0: लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से। तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका एसी है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण, काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है, जो कि 92% जो दिया गया

0: इसलिए एनलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुटपा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहे, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बताएं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

आज की सुनहरी यादों में होंगे प्यार, मोहब्बत, इंतजार, दोस्ती और जिंदगी के रंगों से सजे चुनिंदा गीत। तो आइए यादों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे से।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनहरी यादें। पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस भी होते हैं।

ये है सुनहरी यादें कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति। महकते गीत चहकती यादें, यही तो है जिंदगी की असली सौगातें। इसके साथ ही ये सुनिए आज की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने

कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।